0: good?
1: Good to go. Well, Prime Minister Modi, welcome back to the sacred turf of the Melbourne Cricket Ground, the birthplace of Test cricket, the home of Australian rules football, and the scene of so many famous contests between Australia and India. Just 2 years ago, Australian and Indian fans broke an attendance record that was 90 years old. Over 5 days, 370,000 people came through these gates to watch the fourth test of the Border Gavaskar series. That is the passion and the respect between our rivalry. And it is a great honour to be joined here by two legends of Australian cricket who are both admired and revered in India too, Lisa Salikar and Steve Waugh. As a player and captain, Steve Waugh was famous for breaking free of the hotel bubble and getting out and experiencing the real India. That won him so much respect and affection among the Indian people. Back then, Steve was an exception, not anymore. These days, that connection between players and coaches from both our countries is much more the norm, and we are so much better for it. Lisa's remarkable life journey from Pune to captaining Australia is another example of that bond. That is the power of sport. It breaks down our differences and it brings us together. And we're here today to build on that. Today I announce that Australia will bring the Big Bash League to India for the first time. The season opener for this summer's Big Bash between the Melbourne Renegades and the Perth Scorchers will be played in Chennai on Saturday the 12th of December. And it will kick off a week-long G'day Namaste Festival of Australian Sport, Culture and Business Engagement. There will be a senior business delegation led by the Business Council of Australia, building on the economic roadmap that we launched just last year. And today we recognise that in both our countries, sport is a serious business as well. That's why Prime Minister Modi and I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism and investment. It will also build on new growing areas of shared passion. And that brings me to footy. A few years ago, there were 150 people in India playing Australian rules football. Today, there are 10,000 players across 11 states. And I know that the AFL are big believers in that growth and they're investing in it. This exchange of sporting cultures goes both ways, as we saw when India brought Kabaddi here to Melbourne in 2024. And with India hosting the 2030 Commonwealth Games, Australia hosting the 2032 Olympics, and India bidding for the 2036 Olympics, which I'm certain Australia will support, there is a decade of opportunity ahead of us for more friendly rivalry, serious contests, and increased cooperation right across the board. I'll introduce Prime Minister Modi to address you now.
0: Thank you.
1: Thank you, my friend.
2: Mere Mitra, Prime Minister Albanese, Premier Jacinta Allen, Khel Premi Sathiyo, आप सबको मेरा नमस्कार. एमसीजी में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं. एक भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहां कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहां केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है। अभी हमने बच्चों को कबड्डी, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए इन बच्चों से गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिल गया। उनके जोश को देख करके लगा आज यहां बच्चों का एग्जीबिशन मैच नहीं है, फ्यूचर चैंपियंस का ऑडिशन चल रहा है। उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा से यह स्पष्ट है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में खेलों का भविष्य बहुत उज्जवल है।
0: माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर अल्बनीसी, प्रीमियर जेसिंडा एलन, फ्रेंड्स हु लव स्पोर्ट्स, नमस्कार, वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फॉर एनी इंडियन कमिंग टू द एमसीजी इवोक्स टू इमोशंस एट द सेम टाइम। द फर्स्ट is the thrill of an India-Australia cricket match. The second is the realization that in both countries, cricket is not just a sport. It's a shared passion. But today, there is no pressure of a last over finish. Today is about the joy of sport, the warmth of our friendship, and the energy of future champions. A short while ago, we watched children playing kabaddi, footy, Australian rules football, and cricket. Looking at their enthusiasm, it feels as though this was not an exhibition match, but an audition for future champions. Their confidence and energy make it clear that the future of sports, both in India and Australia, is exceptionally bright.
2: जब भी मुझे मेरे मित्र प्रधानमंत्री अल्बनीसी से मिलने का अवसर मिला है, क्रिकेट हमारा नेचुरल कनेक्टिंग पॉइंट रहा है। अहमदाबाद में हम साथ में स्टेडियम गए थे और आज यहां आकर मैं स्पोर्टिंग स्पिरिट महसूस कर रहा हूं। जब हमारे बीच स्टीव वॉ और लीजा स्थालेकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद है, स्टीव वॉ की मेंटल टफनेस और डीजा स्थालेकर की ऑलराउंड एक्सेलेंस हमें याद दिलाते हैं कि चैंपियन बनने के लिए टैलेंट, टेम्परामेंट और टेनेसिटी तीनों की आवश्यकता होती है।
0: फ्रेंड्स, whenever I've had the opportunity to meet my friend Prime Minister Albanese, cricket has always been a natural connecting point. We watched a match together in Ahmedabad, and coming here today, I feel the same sporting spirit once again. We are also joined by stalwarts such as Steve Waugh and Lisa Sthalekar. Steve Waugh's mental toughness and Lisa Sthalekar's all-round excellence reminds us that becoming a champion requires three facets: talent, temperament, and tenacity.
2: Friends, sports भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बनीसी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों के बीच को भी बड़े सपने देखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है.
0: फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स आर अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप. इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू लॉन्च द इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप टुडे विद प्राइम मिनिस्टर अल्बनीसी. थ्रू दिस इनिशिएटिव वी विल डीपन कोऑपरेशन नॉट ओनली इन क्रिकेट बट अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स. वी विल वर्क टुगेदर इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी. वी विल स्ट्रेंथन आवर पार्टनरशिप बोथ ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड एज वेल. इन इंडिया वी हैव डेमोक्रेटाइज्ड नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो स्पोर्ट्स. थ्रू द खेलो इंडिया प्रोग्राम चिल्ड्रन फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, विलेजेस एंड ऑर्डिनरी फैमिलीज हैव बीन गिवन अ प्लेटफॉर्म टू ड्रीम बिग.
2: आज भारत में स्पोर्टिंग टैलेंट कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. यह देश के हर कोने से, हर बैकग्राउंड से उभर रहा है. 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search for a new fuel map. Electric, ethanol, hydrogen, CNG, hybrid, what will power India next? India's sharpest mobility minds come together to decode the fuel mix that will define the road ahead. The NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026 on 15 July, only on NDTV Network.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: बाय नाउ, सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस,
7: बाय नाउ, सेल।
6: होल्ड होल्ड,
7: बाय,
6: सेल इमीडिएटली।
5: कंफ्यूज्ड? व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड? आस्क प्रॉफिट विद महिमा एंड पुनीत, मंडे टू फ्राइडे 10:30 AM Only on NDTV Profit. मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
8: This is morning show.

0: and a grave violation of human rights, regardless of its geography.
1: ग्रामीण में तो केसेस वैसे आते हैं हमको, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरी भाग में नहीं आते. शहरी भाग से भी केसेस हमको आते हैं. शहरी भाग में भी जो भी वहाँ के जो ये है कम्युनिटीज़ वगैरह है, जो कि रूरल मतलब जो चाल वगैरह जो बोलते हैं, उस एरिया के भी लोग कैसा रहते हैं, उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, या फाइनेंशियली उनके इशू रहते हैं, उनको फाइनेंशियली वो बच्ची को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनको दिमाग में क्या रहता है कि बच्ची की शादी करवा दो, और जो है बच्ची की शादी करवा दिए तो उनके ऊपर से जिम्मेदारी निकल जाएगी.
0: Vaibhavi's story tells us that vulnerable girls can be protected and given a second chance at childhood when vigilant local communities and civil society networks work together. Each one of us can make a difference. Stay alert to the warning signs in your own ecosystem. Your one act of vigilance can rescue a life and save a childhood.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
2: सबको

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: सरसों से सरसों।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आकर मसाला।
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause. I reflect. I dig. Until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious.

0: continuously telling her to look forward, to look at the board the teacher is teaching. She was a disciplined child. If you can see in the classroom, she was disciplined. She was sitting on her seat. She was not moving. She was not complaining for any small thing. After 55 minutes of bullying, she went to the teacher. You can see there is a gesture like this, ma'am, ma'am.
1: Yes.
0: So ma'am, it needs lot of courage to approach the class teacher. Five times she went to the teacher to explain. You can see her that she's saying, ma'am, I didn't do this, ma'am. When did I do that, ma'am? I didn't say this, ma'am. Ma'am, no, ma'am, no. Ma'am, she was saying all that. The teacher cornered her. She participated in that bullying. It was a willful neglect by the teacher's side. Amira was visibly, you can see that she was showing all the alarming signs, all the
1: yes.
0: alarming gestures. Oh, panic. This is putting her both the hands on the forehead. It means that child is going through something immense, something very painful she is seeing on the digital slate. However, we kept explaining this through the media in our initial 2 months conversation. The CBSC was the only body which took a stringent measure against the school by de-affiliated this school, because CBSC conducted a thorough investigation by visiting the school continuously for 2 days. They noticed so many things which even we were not knowing.
1: Yes.
0: So all that was in the report of the CBSC. However, after 8 months of continuous follow-up with the police officials, visiting the police station, talking to Mr. Rashi, DCP of Southwest of Jaipur, continuously visiting him and getting all the harassment which we could in those 8 months.
1: What is the harassment, Shivani ji? You must tell us how you've been harassed. You face trauma, you face the worst tragedy a parent could. What is the harassment you're alleging?
0: So they were saying there was no negligence in this case. They were saying this on my face, that there was no negligence. This case should be FR. I never know the meaning of FR. So I searched it. It is FR means the closure of the case. There is no criminal
1: action. They want
0: action.
1: To close this case?
0: Yes. Hey, they wanted to close this case.
2: Commissioner ne bola ki isme to koi criminal angle hi nahi hai.
0: There is no criminal angle. Your child must be upset because of something else.
2: Fir humne High Court mein appeal kari, High Court mein writ lagai, fir hamara investigation ऑफिसर बदला गया फिर उन्होंने ये JJ 75 का एक्ट लगाया है.
1: So अभी where does the investigation stand right now, given that you said that 3 IOs have been changed? Where does the investigation stand as
0: so
1: of
0: they
1: now?
0: They have submitted the charge sheet in the magistral court on 2nd of July. And they have put 3 charges, like a charge against the class teacher, which is section 75 of JJ Act, and 238 for hiding her bag and jacket for 10 days. For 10 days, she took all her things in her possession. The class teacher took all the things in her possession. And also negligence, 106 negligence. And on the owner and on the principal, they have just levied plain simple negligence 106.
1: Shivani ji, I'm going to come back to you on this. What are you expecting in terms of justice? Because you said this, so has Mr. Vijay, that not enough action has been taken against the principal. But before that, did both of you have a conversation with the teacher in that CCTV footage after the tragedy, asking her what did your daughter say to her? What was her response?
0: Vijay,
2: ma'am, humne police ke samne hi, class teacher ke samne CCTV footage dekha tha. हम जब जब मिनट बाय मिनट देखा है, हमने बोला मैम आप क्या बोल रही है उसको, ये हमारे अमायरा आपके पास आ रही है. तो मैडम का रिएक्शन था कि ये बोल रही है कि बच्चे मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, प्ले कर रहे हैं. मेरा मैडम ऐसा तो कुछ बोल नहीं रही वो. फिर वापस पूछा तो बोले नहीं नहीं वो ऐसे बोल रही कि मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहे. मैम ये तो 3 सेकंड की बात हो गई. वो बच्चे आपके पास में 1 मिनट तक खड़ी है, कुछ कुछ कह रही है, ऐसे ऐसे ऐसे करके भी कुछ बोल रही है, तो कुछ तो कह रही होगी. नहीं नहीं सर, वो ऐसे करी कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं. मैं कहा मैंने पुलिस को बोला, मैं कहा सर ये तो 3 सेकंड में ख़त्म कर रही है अपनी बात, जब से ये तो शाउटिंग करती हुई दिख रही है, तो ये कुछ बोल क्यों नहीं
1: रही. और सीसीटीवी फुटेज इज अ लॉन्ग फुटेज, इट डजंट जस्ट एंड इन अ मिनट.
2: 4 घंटे की है, पूरा 4 घंटे में 8 मिनट में आप सोचो क्या क्या हुआ है. उसके बाद में 8 महीने बाद में पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन क्या थी. हम पूछते हैं ये तो बता दो क्लोजर के लिए कि उसमें बोला क्या गया था उसको. तो उनके पास कोई आंसर नहीं है.
0: माई क्लोजर फॉर आर क्लोजर वी आर लुकिंग वॉट शी वेंट थ्रू इन आर फाइनल आवर्स. We have requested multiple times to the parents of those classmates. We have requested them over phone. We have requested the police officer, Mrs. Jigyasa, who is the current IO, the Aditya, the earlier Mr. Aditya Kakre, IPS officer. We really wanted a closure. We wanted how bad, what bad happened with her. What were the last words which she faced? I mean, what kind of humiliation she went through? We really want to know as a parent. This will be our closure. We are looking for this kind of closure now.
1: You must. You they owe you an explanation, ma'am. But I want to understand from you about Amira's behavior. Was she disturbed before that day going into school? What were the conversations around this bullying that, you know, you've claimed? And did she speak to you about it earlier?
0: Yeah. Okay, so a day before, that was Halloween, as you all know, she was playing with her friend. She collected almost 107 toffees, chocolates. She was playing with everybody. Ma'am, she was a bright child. She was the brightest star. I want to play one audio here.
2: 31st का audio है मैम. आप कुछ सोचिए उसका state of mind कैसा है. मैं play कर रहा हूँ.
1: जी.
3: अरे क्या स्टाइल है यार, तक अच्छा टर्न तो मैं भी नहीं ले पाती यार दादी. वाह रे वाह दादी यार.
2: मेरी मदर किसी शादी में गई थी, उन्होंने अपना चलने का वीडियो भेजा था, तब हमारा ने उनको वॉइस मैसेज
0: दिया. एक वॉइस मैसेज दिया दैट दादी यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वॉकिंग लाइक अ मॉडल, अ मॉडल इवन कैन नॉट वॉक बेटर देन यू. दैट वाज अ स्टेट ऑफ माइंड. शी वाज प्लेइंग, शी विजिटेड ऑल द फैमिलीज one night before while playing Halloween and collecting all those toffees. She kept all her toffees in a bag. She told our maid and to me that these toffees I will eat for next 3 months. She could not see next 12 hours. She was very happy in the classroom. You could easily see how happy. We were told by the police that maybe because of Halloween she played, maybe because of that she jumped.
2: मतलब उनको सपना आया, वो ड्रीम आई.
0: Maybe she got a dream that time in the classroom.
1: So there's been total denial till now. There's been no cooperation whatsoever by the school.
2: राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये इन्वेस्टिगेशन टीम की वर्डिंग है कि उसको सपना आया होगा इसलिए उसने ऐसा कर लिया. मतलब सर आपने सीसीटीवी देखा होगा, कैसी बात कर रहा. राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दे दी है स्कूल को कि कुछ नहीं हुआ. एक तरफ सीबीएसई ग्रॉस नेग्लिजेंस बता रही है, सिस्टमिक फेलियर बता रही है. राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है कि इनकी सारी एनओसी ठीक है, फायर एनओसी ठीक है, वाटर ड्रिंकिंग सिस्टम ठीक है. हमने कहा बात बुलिंग को है, काउंसलिंग को लेकर हो रही है, यहाँ वाटर को लेकर नहीं हो रही, एनओसी फायर की वो लेकर नहीं हो रही.
1: विजय जी, डिड शी एवर कम बैक फ्रॉम स्कूल सेइंग दैट शी वाज बीइंग बुलीड?
2: नहीं, उन्होंने जब जब हमारा ने 3 से 4 इंसिडेंट हुए थे 1.5 साल के अंदर, जब जब हमारा ने हमें कुछ बताया, जैसे मिडिल फिंगर का एक इंसिडेंट हो गया, हमने इसको क्लास टीचर कोऑर्डिनेटर को रिटर्न में दिए हैं कंप्लेंट्स, और वो कंप्लेंट्स हमने पुलिस आयोग को भी दिए हैं. स्कूल से हमारा सिर्फ ये सुनना चाहता था कि हम देख लेंगे, हम कर लेंगे ठीक, लेकिन कभी भी इस पर कुछ हुआ नहीं. हमने स्कूल चेंज करने की कोशिश करी, मार्च 2025 में हमने सेंट जेवियर्स में अप्लीकेशन डाली, लेकिन किसी वजह से हुआ नहीं, वैकेंसी नहीं थी. फिर हम प्रिंसिपल के पास गए 22 मार्च को, जब हमने इनका वो
0: रिपोर्ट का लेने,
2: तब प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ने बोला कि नई क्लास होगी, नई क्लास टीचर होगी, हम इसको संभाल लेंगे और एकदम सही रहेगा. और मेरा बच्चा की अटेंडेंस 93/90 थी, वो क्लास की टॉपर थी, वो 11 अक्टूबर को ऑलराउंडर एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है उसको 4th ग्रेड का. उसके अलावा वो कथक में अवार्ड ले चुकी, डांस में ले चुकी, सिंगिंग में ले चुकी, स्पेलिंग बी में रीजनल क्वालिफाइड कर चुकी, ओलंपियाड में ले चुकी, दोहा वाचन में ले चुकी, बास्केटबॉल में ले चुकी, वॉयलिन में ले चुकी, हर एक्टिविटी में वो पार्ट करती थी.
0: देयर वाज मैम, आप सोचेंगे इतनी ब्राइट, शी वाज अ वेरी वेरी ब्राइट एंड वेरी काइंड चाइल्ड मैम, वेरी काइंड चाइल्ड. दैट्स व्हाई शी इट इज समथिंग लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ इमेंस बुलिंग बाय द क्लासमेट्स एंड ऑफ कोर्स फॉर हर. It's really like Guru Brahma, Guru Vishnu. She used to sing all that time, this Doha. She used to say for her, the teacher was of, she was a god for her. And she always treated her teachers with, with the status of the god. She used to say that my teachers are very nice. She never complained anything about anyone. She was a great child, ma'am. And you can see in the class there was no discipline, zero discipline in the class.
2: एक बार एक बच्चा गिर गया था, उसे गलती से बर्थडे पे धक्का लग गया था, घर पे आके रोने लग गए हमारा. क्या हुआ कि मेरे से गलती से बर्थडे के दिन किसी बच्चे के धक्का लग गया, पापा वो गिर गया, रो रही है वो, मतलब
1: लुक एट द
2: आप
1: एम्पथी.
2: सोचो,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज India Inc.'s best and brightest.
9: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
10: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
11: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
12: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India. To have the right stuff is a great opportunity for us.
13: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
14: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
15: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
8: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
16: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search for a new fuel map. Electric, ethanol, hydrogen, CNG, hybrid, what will power India next? India's sharpest mobility minds come together to decode the fuel mix that will define the road ahead. The NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026 on 15 July, only on NDTV Network.
0: Buy, sell, hold, hold.
8: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. Only on NDTV Profit.
17: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
18: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
19: द थग यू सी इज शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ऑफ डोंबिवली। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, आई हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू टुनाइट। विल योर गवर्नमेंट इमीडिएटली अरेस्ट दिस राउडी Ramesh Mhatre?
20: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
21: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne hak diya haath uthane ka?
22: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
21: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
22: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
21: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर, अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
22: प्रशिक्षण हम हमारे
21: नहीं मांगेंगे
22: सर।
23: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
24: Buy now, sell immediately.
25: Hold it, boss.
26: Buy now, sell. Hold, hold.
27: Buy,
28: sell immediately.
8: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. Only on NDTV Profit.
18: Today's last word becomes tomorrow's first edge.

0: तो किसने हक दिया हाथ उठाने का?
1: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
0: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर? नेशनल टीवी पर है आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप?
1: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
0: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे? क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
1: प्रशिक्षण हम हमारे
0: नहीं मांगेंगे
1: सर।
2: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mathre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause. I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
5: Really?
4: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: The birthplace of Test cricket and recalling the record-breaking Border Gavaskar Trophy attendance at the venue.
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बेनिजी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों के बीच को भी बड़े सपने देखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है।
2: Prime Minister Modi and I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism and investment. It will also build on new growing areas of shared passion. And that brings me to footy. A few years ago, there were 150 people in India playing Australian rules football. Today, there are 10,000 players across 11 states. And I know that the AFL are big believers in that growth and they're investing in it. This exchange of sporting cultures goes both ways, as we saw when India brought Kabaddi here to Melbourne in 2024. And with India hosting the 2030 Commonwealth Games, Australia hosting the 2032 Olympics, and India bidding for the 2036 Olympics, which I'm certain Australia will support, there is a decade of opportunity ahead of us.
0: With that, we'll slip into a short break. On the other side, what's expected as the Prime Minister visits New Zealand now.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: योर फर्स्ट मूव सेट्स द डे एंड इन मार्केट्स बीइंग अर्ली इज द एज। द एज बिगिंस द नाइट बिफोर।
6: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
7: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
5: I decode the global pulse, shaping the market mood.
6: I bring insights that help you make decisions that matter.
7: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
5: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.
8: 2 nations, 1 defining vision from critical

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसो थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाह मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
10: The thug you see is Shinde Sena Corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
11: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
12: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne hak diya haath uthane ka?
13: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
12: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप?
13: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
12: इसका मतलब कि आगे जाके भी सर, अगर, अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
13: प्रशिक्षण हम हमारे
12: नहीं मांगेंगे
13: सर।
14: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened.

0: जब हमने बीजेपी को भी कहा आप भी हमारे साथ चलो, बीजेपी को भी चिट्ठी लिखी, कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखी, और मीरवाइज एक ज़माने में उनके फादर जो थे वो अवामी एक्शन कमेटी के सरबरा थे, तो वो जो फैमिली है वो पाकिस्तान की फैमिली तो है नहीं, इंडिया के अंदर है, इंडिया बॉर्न है। हमने उनको कहा है कि ये चूंकि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का इशू है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इशू नहीं है, कांग्रेस का इशू नहीं है, बीजेपी का नहीं, ये सब कलेक्टिव इशू है।
1: पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से सब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी रियासी जम्मू कश्मीर में है इंक्लूडिंग बीजेपी, सब पार्टियों को चिट्ठियां गई हैं डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से। अब ये उन पर है कि वो किस हिसाब से इसको रिएक्ट करेंगे, कितने लोग आएंगे वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये है कि एक अच्छा रिस्पांस मिला है और मैं समझता हूं कि सब लोग उधर जंतर मंतर पर आएंगे और इस जो प्रोटेस्ट हमारा है उसमें शिरकत करेंगे।
2: इन द नेम ऑफ स्टेटहुड देयर इज अ प्रोटेस्ट दैट इज गोइंग टू बी लेड बाय दोज हु बिलीव इन सेपरेटहुड, दैट मींस दैट द इंडी अलायंस इज गोइंग हैंड इन ग्लव विद द स्टूजेस ऑफ पाकिस्तान, with those who have been funded and provided shelter by Pakistan and those who want tukde tukde of Bharat. These are the people who for the sake of BJP Virodh are going to descend into Desh Virodh. It is one thing to demand statehood and already the commitment has been given that Jammu Kashmir statehood will be restored. But why they are involving those who are advocating separatism and they are backing terrorism, backing all kinds of anti-India activities.
3: All right, viewers, on that note, slipping into a very short break, we come back on the other side and get you an exclusive conversation that my colleague Vedika Sood had with the parents of that young child, Amira, who lost her life recently. Stay tuned for that and lots more on the other side of this short break.
4: Buy now, sell immediately.
5: Hold it, boss.
6: Buy now,
7: sell.
8: Hold.
7: Buy. Sell immediately.
9: Confused? What to buy?

0: urge all of them to have this much confidence to talk to the teachers, to the principal, and ask the right question at the right platform, and talk to your child also. It doesn't mean that I have not spoken to my child. I spoke to her.
1: But you had faith in the institution as well.
0: Yes, we had complete faith because the school and the teachers come into the role of the loco parentis. They are the teachers.
1: They are the parents for your child.
0: Yes. They were the parents. They could really recognize all the alarming signs given by Amira on that day. Ma'am, just to tell you that Amira was a child who was scared of only one thing. I want to tell everybody here, she was scared of only height. And look at her tragic end. She fell from 48 feet. What was her state of mind at that time? We are unable to sleep these days. From 8 months, we are not sleeping. We are not sleeping. We are in so much pain. We are not going to our offices. We are sitting in a different city. That house is locked since she left. We do not have the courage to see her things and to open that house. We are staying at a different place. We want a stricter action against the school.
1: But I haven't seen parents as brave as the two of you. Vijayji, before I wrap this up, I want the people of India who should be standing every moment with the two of you to understand what your journey has been in the last 8 months.
2: Ma'am, जब से हमने ये इंसिडेंट हुआ है अमायरा का, तब से हम वॉइस रेज कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है। 22 नवंबर को हमने प्रोटेस्ट किया था, हमने अपील की थी, 5500 स्टूडेंट थे उस स्कूल में, उनके पेरेंट्स से अपील करी थी, आप आइए क्योंकि आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। अमायरा की क्लास से एक भी पेरेंट नहीं आया, स्कूल से एक या दो पेरेंट आए। 22 नवंबर को 700-800 लोग आए थे। उसके बाद में जब CBSE ने कॉग्निजेंस लिया और डीएफिलेट किया स्कूल को 30 दिसंबर को, आप सोचिए 31 तारीख को इन्होंने दो ग्रुप बनाए स्कूल की तरफ से पेरेंट्स के नाम से। उसमें उन लोगों ने हमारे अगेंस्ट इतनी चीज़ें बोली, फ्रेम करनी चाहिए कि हमारा डाइवोर्स हो रहा है, हमारा 3 महीने इसके पास रहती थी, 3 महीने उसके पास रहती थी, कुछ भी, क्योंकि स्कूल को डिफेंड करना था। उन्होंने टीचर्स के बच्चों को, हॉस्टल्स के बच्चों को आगे कर दिया। आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा फेसबुक पे, उन बच्चों को आगे कर दिया कि ये स्कूल हमारा बहुत अच्छा है, ये वो बच्ची परेशान थी, वो मेंटली डिस्टर्ब थी, मतलब कुछ भी चीज़ें हमारे अगेंस्ट चलाई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमें लगा कि अगर हम बैठ जाएंगे तो ये मुद्दा दब जाएगा, और हर स्कूल में, किसी भी स्कूल में कुछ भी होगा ना तो कुछ नहीं होगा। आप एक चीज सोचिए, हाई कोर्ट में जज ने मुझसे बोला कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या ग्रीवेंसेस हैं, आप चाहते हैं कि ये बच्चे को मैं शिफ्ट कर दूं और उसके बाद में ये बच्चे जो 10 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं उनके फ्रेंड्स छूट जाएं। मैं कहा सर, मौत से बड़ा कुछ नहीं होता। मैंने जज साहब को बोला, सर मौत से बड़ा कुछ नहीं होता, बच्चा एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जो बच्चा इस दुनिया में नहीं है वो अपनी क्या सांसें एडजस्ट कर सकता है, क्या वो वापस आ सकता है? तब जज ने वो बात पलट दी। मतलब इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं इस 8 महीने के दौरान। फिर भी हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, स्कूल को पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा।
1: विजय जी, शिवानी जी, एज अ पेरेंट ऑल आई कैन से इज दिस इज एवरी पेरेंट्स नाइटमेयर दैट यू आर लिविंग। एज अ जर्नलिस्ट आई कैन से यू आर नॉट अलोन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हियर ऑन ब्रेकिंग ग्राउंड।
0: थैंक यू सो मच।

0: living a stone's throw from the bustling IT hub of Pune city. She was on the verge of being married off to a 25-year-old man when she was rescued in the nick of time.
1: Actually, एक मेरी फ्रेंड है जो अहिल्या नगर में रहती है, तो उसने मुझे ऐसे ही कॉल किया था शाम के टाइम पे और हमारी बात चल रही थी, तो उसने मुझको शेयर किया कि अरे मुझे ना हल्दी में जाना है करके. तो उसको मैंने पूछा किसकी हल्दी है, तो बोले नहीं मेरी बाजू में ही रहती है एक लड़की और उसकी शादी है और उसका जो एज है वो कम है. तो उसको पता ही था कि मैं काम करती हूँ और उसको ये भी पता था कि बच्ची की जो शादी है वो पुणे में होने वाली है. मैंने मेरे एनजीओ को बताया इसके बारे में और उसके बाद मैंने चाइल्डलाइन को इन्फॉर्म किया, CWC को इन्फॉर्म किया और इनको इन्फॉर्म करने के बाद हमने वहाँ पे जो स्पॉट था वहाँ पे हम चले गए. वहाँ पे जाने के बाद हमारे साथ में चाइल्डलाइन का टीम था और जैसे ही हमने इन्फॉर्म किया था कि वहाँ के स्थानिक जो पुलिस थे वो वहाँ पे थे, ग्राम सेवक था, BDO था और देन और भी आंगनवाड़ी सेविका जो थी वो भी हमारे साथ में थी. हम लोग सब वहाँ पे पहुँचे और बच्ची का जो एज था तो सबसे पहले हमने वो वेरीफाई किया, देन जो फैमिली थी उनको बताया कि बच्ची का जो एज है वो कम है तो ये चाइल्ड मैरिज होता है और अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो तो आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी. तो उनका काउंसलिंग किया दोनों भी फैमिलीज का और फैमिली को समझाया, देन वो समझ गए कि नहीं बाबा कि हमें चाइल्ड मैरिज नहीं करना है.
0: The collective action of Child Helpline, the Gram Sevak, the Block Development Officer, Indapur Police, an Anganwadi worker and the local NGO, Committed Communities Development Trust or CCDT, a partner NGO of the Just Rights for Children Network, stopped the wedding before it could happen. As a result, no arrests were made. Today, CCDT continues to follow up regularly with Vaibhavi and her family to ensure her safety, education and overall well-being. Vaibhavi is still living safely at home with her family and is now preparing for her class 10 exams. Child marriage is a crisis thriving right inside our urban centers, fueled by migration, economic pressure and a lack of awareness and action on our part. Ultimately, child marriage is a crime and a grave violation of human rights, regardless of its geography.
2: ग्रामीण में तो केसेस वैसे आते हैं हमको, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरी भाग में नहीं आते. शहरी भाग से भी केसेस हमको आते हैं. शहरी भाग में भी जो भी वहाँ के जो ये है कम्युनिटीज़ वगैरह है, जो कि रूरल मतलब जो चाल वगैरह जो बोलते हैं, उस एरिया के भी लोग कैसा रहते हैं उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है या फाइनेंशियली उनके इशू रहते हैं, उनको फाइनेंशियली वो बच्ची को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनको दिमाग में क्या रहता है कि बच्ची की शादी करवा दो और जो है बच्ची की शादी करवा दिए तो उनके ऊपर से जिम्मेदारी निकल जाएगी.
0: Vaibhavi's story tells us that vulnerable girls can be protected and given a second chance at childhood when vigilant local communities and civil society networks work together. Each one of us can make a difference. Stay alert to the warning signs in your own ecosystem. Your one act of vigilance can rescue a life and save a childhood.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
11: द थग यू सी इज शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश मात्रे ऑफ डोंबिवली। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, आई हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू टुनाइट। Will your government

0: तबीयत खराब हुई जिस टाइम पे कुछ नहीं बताया हमें, लास्ट टाइम को बताया गया जब वो उनको इस वार्ड से उस वाले बिल्डिंग में रेफर किया ना, तब उन्होंने लास्ट टाइम बोला कि इनकी किडनी फेल हो गई। तो मैं पूछा किडनी कैसे, किस किस किस वजह से फेल हुई है, तो उसकी कोई जानकारी नहीं दी।
1: बिफोर द फर्स्ट क्राई ऑफ अ न्यू बॉर्न इज होप, इट्स द प्रॉमिस ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। But for several families across Rajasthan, what should have been an occasion for celebration turned into tragedy. From Kota to Bikaner to Jodhpur, several of these women came to these hospitals to deliver their babies, but

0: ended up falling critically ill, and some of them never even made it back home alive. Now, NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards to investigate what transpired into this tragedy.
1: We met the grieving families. We spoke to senior doctors, hospital administrators, and government officials. Some of them came on record, others declined. The suspended doctors were also contacted. But the deeper the investigation went, the murkier it became. Families say they still haven't received complete medical records. In two of the deaths, post-mortem reports do not clearly state the cause of death. Key forensic reports are still awaited. Yet, one fact is undeniable. Something catastrophic happened. Women walked into government hospitals to bring new life into the world. Some never returned home. Weeks later, in some cases months, the investigations are still underway. The government has not yet given a definitive answer on what caused these tragedies or who will be held accountable. The question also arises whether something like this was always in the making. Five women walked into these government hospitals hoping to return home with their babies. None of them did. One of them was just 5 months pregnant. She needed stitches to save her pregnancy, but instead lost her life. Payal was the first to die. Hours after giving birth, her condition suddenly worsened. Then came Jyoti, then Pinky, then Priya. Five women, five families shattered. Families that blame doctors and a healthcare system they say failed them. Officials insist only three of the five deaths were linked by similar complications leading up to the renal failure stage, part of the same cluster. But the tragedy did not end there. Several other women suffered similar complications. They survived, but many are still undergoing repeated dialysis instead of caring for their newborns. No one seems to have a clear answer yet.
2: मैं यहाँ से जब उसको लेके गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4:30 के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा पंखा पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पर लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6:30 डॉक्टर आया वहाँ पर। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर ICU में शिफ्ट किया हमने उसको। उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
3: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं। मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, तो नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है। 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराए का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे? मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे?
4: हमारा तो इंसान गया है, इसमें दोषी कौन है? या कोई दवा कंपनी है, या कोई डॉक्टर्स हैं, या कोई सरकार है, या कोई उसके कंपनी से कोई पैसा खा के इसको चला रहे हैं सरकारी, इसमें कौन है इसके जिम्मेदार? उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। दोषी हमारा इंसान गए तो उसको दोषों से तो मर्डर है। मेरा मेरे दो जनों का मर्डर हुआ है मैम। मेरा
5: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था ये?
6: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जाँचें थी सब नॉर्मल थी। शुरू से लेकर अंत तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जाँचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी। शाम को 4:30 करीब डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद ही बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानन में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में। 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पर रही।
5: किडनी का।
6: हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था, मेरे पास गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम। तब से 2 महीने से इन्हीं के साथ हूँ, हर तीसरे दिन तो डायलिसिस होती है।
5: कितनी बार डायलिसिस हो चुकी
6: है? मैम 24-25 तो हो ही होंगी।
1: Sources have alleged that there were issues with monitoring the urine output of the new mothers after delivery, a critical parameter that they stated was not tracked adequately in some cases at the Kota Medical College Hospital. It was flagged that there was poor tracking of blood pressure levels, ECG functions, hydration, liver and kidney function tests. Recommendations have also been made for better infection control mechanisms. The emergency operation theatre, where 6 of the deliveries took place, has now been shut and is being renovated. The labour room had a seepage. However, officials say bacteriological cultures from the OT showed no signs of contamination. In the aftermath of the Kota maternal deaths, drug controller officials also found that some oxytocin vials contained water instead of the drug. However, NDTV has come to know that doctors and investigators now believe oxytocin is unlikely to have directly been the cause of these deaths. Attention has shifted to other possible factors for the deaths. Sources say reports on surgical items, IV sets and IV cannulas are still awaited, while tests on samples of the used antibiotics and several other medicines have come clear. Fresh samples of medicines linked to patients developing such symptoms as shivering have also been sent for analysis. Some findings have already been submitted to the Health Ministry, but sources say investigators increasingly believe the tragedy may have been multifactorial, involving a combination of patient condition, medical consumables, environmental factors, as well as a variety of other factors. As the probe continues, there is still no clear answer. 2 doctors, including 1 contractual doctor, have been suspended.
7: उसके बाद मतलब मेरे को यूरिन नहीं आया। फिर 9 तारीख को फिर मुझे सवेरे यहाँ लेकर आए थे 7 बजे के आसपास। फिर उसके बाद का फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरा पहले का भी बच्चा नॉर्मल नहीं है। नहीं नहीं कुछ भी इशू नहीं था मेरा तो।
5: डॉक्टर ने क्या बोला कैसे ये?
7: वहाँ पर तो क्या नाम से ऐसा कुछ हुआ नहीं,
5: बताया नहीं है।
7: नहीं बताया नहीं है, हमें नहीं बताया था।
8: हाँ बीपी कम ज़्यादा हो जाती है, बीपी बढ़ जाती है कभी, कभी कम हो जाती है, फिर शुगर बढ़ जाता है। दिक्कत तो 5 तारीख से चल रही है। तो अस्पताल में रहता हूँ, 2 महीने बच्चा बच्चे सारे यहीं है। और 50,000 रुपये खर्च हो गए, मेरे पास पैसे भी नहीं रहे। अब तो कहाँ तक खर्च करेंगे बच्चा बच्चे के लिए? अब बच्ची की तबीयत खराब हो गई। आज जो देखो मेरा तो उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा, अब क्या करूँ उस बच्ची को।
9: और तो मैं स्टाफ से ये खुद बोल के आई थी, मैं कहा आपको मैं पार्टी दूंगी, मेरे बेबी बॉय हुआ है, है ना, ये तक बोल के आई थी। बट आते ही फिर थोड़ी देर सोई, है ना, फिर उसके बाद में यूरिन आना बंद हो गया। उस टाइम तक तो आया था अच्छा सा, फिर उसके बाद यूरिन आना बंद हुआ, फिर उसके बाद ही मेरी कंडीशन खराब हो गई।
1: Sources said the new Kota Medical College Hospital handles nearly 100 deliveries a day. With such a heavy workload, they claim urine output, which ideally should be monitored every 2 hours, may not have been tracked consistently in every case.
10: Renal failure, there are more than 1,000 etiologies in renal failure. In these patients, the main reason for renal failure is hypotension, decrease in the blood pressure. 4 committees has examined and all the committees, they have clearly stated that everything was normally monitored.
1: Senior doctors say many of the women they treat have had multiple pregnancies, are anemic, or arrive severely dehydrated. They say underlying health conditions coupled with poor nutrition and socioeconomic factors can increase the risk of serious complications during and after childbirth.
11: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो

0: महिला है, उसको पहले से बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है, उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई, ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
1: For families in Kota, the wait for answers has become as painful as the tragedy itself. They are still searching for accountability and for the truth behind the events that changed their lives forever. Like thousands of others from the rural corners of India, they went to government hospitals in larger cities in search of safe and affordable institutional deliveries. Instead, that search ended in inconsolable loss.
2: In Rajasthan, every 1 lakh deliveries that take place, 1 lakh deliveries, be it cesarean, be it natural delivery, the death rate is less than 48 per 1 lakh. And in JK Lawn, there are 6,000 deliveries every year. The mortality rates in these deliveries is to the tune of 0.001%. One of the common factors we found is the heat wave, the heat. You say, how do you mean, how does it correlate with heat? Because dehydration takes place.
1: Bikaner, six mothers and stories of loss. Senior doctors at the PBM hospital in Bikaner insist that the six women do not represent a single cluster with a common cause. One of them was 6 months pregnant and had a history of hypertension. Another had diabetes. They say each patient had a different clinical history. It is claimed that they were mostly referral cases and there were pre-existing risk factors that ranged from severe pregnancy-induced hypertension and postpartum hemorrhage to diabetes and kidney disease. According to these doctors, acute kidney injury is a known complication that can arise from multiple conditions and that the blood cultures of all the patients had come negative. The PBM hospital's internal committee has concluded that no common denominator has emerged. Instead, doctors believe the complications may have been multifactorial, involving a combination of underlying illnesses like diabetes, severe anemia, dehydration and poor nutrition, as well as environmental factors such as extreme heat. Investigators say a final conclusion can only be drawn once all the pending reports are received.
3: Player gaya jaj bathe main bharti kara di jat ke bachcho to huna lo jaj me theek raat bhar bin bharti ra ke subah 9 baje bhi ar patient ho jad babu yo jad me sab khush hua hai baad me kai main gayi me asar dakhane jad me kyu kai yo ke bhai ka apne shikcha dodi ke man sardi lage delivery hu 2-3 घंटा बाद
4: डिलीवरी के बाद बच्चे से मिली थी
3: हां बच्चे मिली माओ मिली के पापा ने बोलो जन मैं पापा ने फोन करी मैं कहो कि ज्यादा दिक्कत होगी जन मैं काई हो के ये खत्म होने वाली है जन मैं एक दम रही काई हो
4: नॉर्मल डिलीवरी थी
5: नॉर्मल
4: डिलीवरी के बाद सब कुछ नॉर्मल था
5: हां
4: फिर आपको कहां लेके गए
5: प्रसव रूम में
4: वहां पे क्या हुआ
5: वहां तक पता नहीं गैस करते था पता नहीं चला हुआ
6: 7 घंटे तक बिल्कुल नॉर्मल थी कोई दिक्कत नहीं थी डिलीवरी होने के बाद में भी फिर हमें बोला गया ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है इनको ऑपरेशन में लेके जाना पड़ेगा उसके बाद में वहाँ से लेके आए बाहर निकाले फिर बोले वहाँ लेके जाओ ये फाइल लेके जाओ आप वहाँ डॉक्टर से हम दे रहे हैं वहाँ पर जाके दिखा के आओ फाइल दिखा के आए हम वहाँ पर तो वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला कि पहले तो वार्ड का बोला हमें वार्ड में लेके जाएंगे उन्होंने बोला नहीं हम सीधा आईसीयू में लेके जाएंगे इनको
7: क्या ऑपरेशन हाथ में मिस्टेक बन गई उल्टे बस सर रहा था उल्टे सदर बचपन काट दिन ऊपर लवाड़ ऊपर लवाड़ पूरे दिन उल्टे हुए रात रहा 10 बजे ले गए वो ट्रैक्टर में सेटर डायलिसिस कराया रात 2 बजे पाँच साल
8: गणित कौन है सुगर थे शुगर है अच्छा, और ये बस जब वो पेट से है होती है तभी शुगर है कि ऐसे भी शुगर है?
9: शुगर है, थोड़ी बहुत है।
8: थोड़ी बहुत शुगर है।
9: फिर तबीयत डिलीवरी हुई बाद हुई, पहले सही है डिलीवरी हुई, जिन ऑपरेशन डिलीवरी हुई सही, 8 तारीख डिलीवरी हुई, 21 तारीख बाद में खराब हो गया।
10: आते हैं तो खुशी के लिए, लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं। क्या अभी 26 दिन हो गए।
2: द पेशेंट्स हु डाइड दे वर पेशेंट्स हुज फाइल रिपोर्ट्स यू सी वर कोमॉर्बिड, यू नो लाइक इन जोधपुर जॉन्डिस, हाई डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर, आई मीन योर हाइपरटेंशन। एम्स टीम केम, दे डिड अ फुल इंस्पेक्शन एंड दे डिड टेल अस दैट यू हैव टू tighten your SOPs. In Bikaner, one lady had gone to Nagaur, then she got into complications and she got onto ventilator. From ventilator she came down to Bikaner, she was even more sick, and so again in Bikaner she was put onto ventilator. So all these ladies who came there were already in a critical state. They never came as normal deliveries.
1: For many in Rajasthan, including senior doctors, the events unfolding today bring back memories of 2011, when contaminated IV fluids at a government hospital in Jodhpur claimed the lives of 18 women. That tragedy exposed deep cracks in the public healthcare system and prompted promises of reform. 15 years later, another series of unexplained maternal complications is under investigation. Sources say investigators are also examining the IV fluids administered to these women, though the reports are still awaited. Whether history is repeating itself remains unclear. Until those answers come, one question continues to haunt Rajasthan. Were the lessons of 2011 ever truly learned?
11: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
8: अच्छा।
11: यूरिन नहीं आ रहा था।
8: अच्छा।
11: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गए, पीलिया वगैरह वो सब कुछ हुआ है, किडनी लीवर पे असर। ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी नहीं आई होगी जिससे हो रहा है।
12: यहाँ आने के बाद इलाज अच्छा हुआ तो अब मेरा थोड़ा उम्मीद जागी है। बहुत परेशानी हुई हमको और हर चीज़ के लिए हमें वहाँ पे बहुत वेटिंग करना पड़ता था रिपोर्ट के जरिए, और हो सके तो दूसरे दिन मिलती शाम को भी। बहुत परेशानी थी। हाँ, बच्चा भी है, उनका भी बहुत परेशानी का है। अभी कौन उनकी देख रहेगा, माँ तो यहाँ पे है उनकी।
13: MDM मेडिकल ICU में रेफ़र करा दिया गया, और जो बाकी 6 पेशेंट हमारे यहाँ थे उनको एहतियात तौर पे, प्रिकॉशनरी तौर पे हायर एंटीबायोटिक्स पे ले लिया गया। 20 जून को जो ये सैंपल्स लिए थे ओटी के, गायनी ओटी के, वो सभी नॉर्मल हैं, और पेशेंट्स के भी 20 जून को सैंपल ले लिए गए थे। उसी दिन प्रॉम्प्टली सभी पेशेंट्स के वेजाइनल स्वैब, उनका ब्लड कल्चर के लिए ब्लड लिया था, यूरिन लिया था, वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई हैं।
14: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, IV फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितनी भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये IV फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने IV फ्लूड काम लिया था। बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
8: 2 घंटे बाद तबीयत खराब हो गई।
15: 2 घंटे बाद क्या होने लगी?
8: ब्लीडिंग हो गई थी। दूसरे दिन फिर सांस की तकलीफ हो गई थी, ऑक्सीजन लगाया था,
15: ब्लड चढ़ा था।
8: रात को उसी दिन
16: वो ऑपरेशन किया था, उसके बाद तो सही बता रहे थे, फिर अचानक से वार्ड में पता नहीं क्या हुआ उनको। तो नॉर्मल कुछ हुआ था, BP डाउन हो गई थी वगैरह, और बाकी वाले को है जो किसी के ब्लीडिंग हो रही थी, फिर एक के होने शुरू हुए, दूसरे के हो गई, दूसरे के तीसरे के हो गई।
17: टू नो वॉट कैन बी द पॉसिबल और एग्जैक्ट कॉज ऑफ these types of happenings in these patients who has been clustered on that particular day, it is a little premature to say, because we have taken the samples of most of these drugs and surgical items and we have sent it for the evaluation. उसी चीज़ को हमको investigate करना है कि इस तरह के happenings में हमको ये लगता है कि कोई चीज़ ऐसी चीज़ गई है जिसको बहुत प्रीफॉर्म्ड फॉर्म में गई है, जिससे हमको तो उसको टेस्ट करने के लिए जब तक हमारे पास में जब टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तो उसको हम नहीं कह सकते, पर हमें इन चीज़ों का जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो हमें सस्पिशन रहता है.
2: कैन सी द मेडिकल रिकॉर्ड एंड द मेडिकल रिकॉर्ड इज ओनली हैंडेड ओवर वंस यू आर डिस्चार्ज्ड. सो व्हेन दे डिस्चार्ज, होपफुली गॉड विलिंग दे विल बी डिस्चार्ज, दे आर रिकवरिंग ऑलराइट, मेडिकल रिकॉर्ड्स विल बी गिवन. But if they want to access the medical record, there's nothing hidden about it. There's no secret about it, about the medical record. They can be shown immediately. AIIMS team came, they did a full inspection, and they did tell us that you have to tighten your SOPs. They have told us certain SOP measures, which Pan Rajasthan, we are putting SOPs to improve. You know, the government is giving everything free. We are spending so many thousands of rupees each day, you know, trying to give them the best care and try to make them recovery. The government is doing their best for them.
18: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismi Taskin for NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी माँ के मस्त डाल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: वी आर ओवर जिमी।
10: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
11: टू नेशंस वन डिफाइनिंग विजन, फ्रॉम क्रिटिकल सेमीकंडक्टर्स एंड हाई स्पीड रेल टू सिक्योरिंग द वास्ट वाटर्स ऑफ द इंडो पैसिफिक, द ब्लूप्रिंट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल पार्टनरशिप इज टेकिंग शेप। टुगेदर द विजनरी माइंड्स रीराइटिंग ग्लोबल डिप्लोमेसी, ड्राइविंग इकोनॉमिक पावर एंड फोर्जिंग अ मैसिव मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर। NDTV presents the Indo-Japan Strategic Dialogue.
12: The fact that there is now suddenly a raging debate with regard to ethanol, why is it that it's happening now?
13: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years, and by the way, in the last 18 months or 24 months, there have been no complaints.
14: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
11: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स,
15: दिस लोकेशन फ्रॉम टेल अवीव,
11: ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी and international affairs.
16: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
17: The Ayatollah Khamenei is gone.
18: There has been a missile attack right behind you.
19: And we need to rush into a shelter.
20: Heading there.
21: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
11: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
22: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
23: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
24: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
25: It's also important that how they are reshaping the industries.
26: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
11: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
14: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
0: 1933। सरसों बाय सेल होल्ड होल्ड

0: Good evening and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on the biggest story of the day, the buck stops here. We're talking about the big political quake yet again that the opposition alliance finds itself in. You've already had MPs of the TMC leaving the party and joining the BJP yesterday. Then you've got murmurs of a rebellion in Punjab as well. And then, of course, there is Maharashtra, where there is a big quake thanks only to one picture that has quaked Maharashtra politics, and the aftershocks are still being felt. We are talking about a meeting that took place between NCP SP Chief Sharad Pawar and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde on Wednesday. Now, it was all supposedly very innocent. Pawar was at the State Assembly to attend a meeting on Maharashtra-Karnataka border issue. Shinde, who was at a cabinet meeting, left early to meet Pawar and greeted him with a bouquet of flowers. The two spoke for about 15 minutes. But the problem is that this conversation happened inside the Deputy Chief Minister's office, following which Pawar then went on to meet his MLAs as well inside Mr. Shinde's office. This 15-minute meeting triggered Team Uddhav, and in fact triggered Sanjay Raut in particular, who lashed out at the 86-year-old leader and asked him what was the need to meet a traitor. 24 hours later, though, there was a dramatic shift in tone. Pawar was now called the supreme leader of Maharashtra. Now, with tensions palpable within the Maharashtra Vikas Aghadi, Supriya Sule stepped in to downplay the buzz, calling the entire episode a misunderstanding, a storm in a teacup. But then this also came with a caveat, because Supriya Sule also said that all the party MPs will act together in whatever they do. The Congress, meanwhile, has also waded in. Prithviraj Chauhan has said that 5 to 6 MPs of Sharad Pawar are restless. The BJP has quickly seized on this remark and sought details of the MPs from Prithviraj Chauhan. The question is, why has one single picture triggered this nervousness in the opposition camp? The answer, perhaps, lies in what's unfolding in these other states, from Punjab to West Bengal, with defections and infighting being witnessed everywhere. But at a time like this, the BJP specifically is asking, when you have the opposition in a state of disarray, when there are problems, especially either in the Congress itself or in the Congress's alliance with other parties, why is Rahul Gandhi still missing in action? Listen in.
1: त्या गद्दाराच्या छताखाली जाऊन अशा प्रकारच्या बैठका घेणं, ह्याच्यामुळे मोठ्या नेत्याची विश्वासार्हता ही कमी होते आणि घसरते, हे मत आहे. आम्ही कधीही गद्दारांच्या अशा ठिकाणी जाऊन आमच्या पक्षाच्या बैठका घेण्याचं एवढे आम्ही काय म्हणतात ते सहिष्णू नाही आहोत. ह्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विश्वासार्हता कमी होते. नाही, ते नाराज कल थे आज नाही. पवार साहब हमारे सुप्रीम लीडर है महाविकास आघाडी के, हमारे नेता है. कल हमारी भावना थी, हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है. एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये हम मानते हैं. जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी.
2: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कम रही है. स्टॉम इन अ टी कप.
3: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने.
2: किसने बोला आपको? एक मिनट भी नहीं मिला. वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले. छोटी सी पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है एंड मीडिया ब्लोन. कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है. एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम हैं, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे.
4: तीन तीन प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, 5-6 सांसद एनसीपी शरद पवार ग्रुप के काफी हलचल में हैं, कुछ इधर उधर जाने की बात लोग कर रहे हैं. साथ ही में 3 पर्याय के लोग बात कर रहे हैं कि मर्जर इन कांग्रेस, पार्ट ऑफ एनडीए, कोई मंत्री बनेंगे उसके बाद, या फिर इश्यू बेस्ड सपोर्ट. तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा मेरे को कोई पर्सनल कोई जानकारी नहीं.
5: अगर ये इन्फॉर्मेशन माननीय पृथ्वीराज चौहान साहब को है तो मैं लीड करके उनको जाके मिलूंगा. वो याद ही उनसे मेरे पास लेने के बाद मैं खुद जो कोई वो 6-7 MPs है उनको जाके विनती करूंगा कि आप एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना में काम करें, इससे इसमें ही आपका भला है।
6: टुडे पंजाब कांग्रेस इज इन अ क्राइसिस इन अ कॉन्फ्लिक्ट मोड, ऑन द अदर हैंड राहुल गांधी इज ऑन अ हॉलिडे मोड। द रियल क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड इज इन ऑल दिस एपिसोड, कांग्रेस एपिसोड, वेयर इज राहुल गांधी? इज हैज राहुल गांधी बीन इन द कंट्री फॉर द पास्ट 20 डेज? इज राहुल गांधी टुडे इन द कंट्री? द क्लियर आंसर इज नो।
0: All right, let's take this across to the guests joining us now. We have Anand Dubey from the Shiv Sena UBT, Dr. Seema Malik from NCP Sharad Pawar, Siddharth Yadav of the BJP joins us. But reveal, what is the truth? Varun Singh, what's going on? Is the NCP Sharad Pawar splitting, joining the BJP, staying where it is? Why is Sanjay Raut so hurt, or is it a storm in a teacup? What are you hearing?
7: Storm in a teacup itself explains what exactly Supriya Sule wants to say. And not only that, Sanjay Raut, I don't know what exactly he's up to. One day he's very unhappy and the other day he's very happy with calling Sharad Pawar as the supreme leader. See, one thing is very clear. Not all of the leaders in the NCP Sharad Pawar camp want to join the Congress. That was floated, one of the ideas that was floated to them. And it is true that NCP Sharad Pawar, if he wants to merge his party, he wants to be in power. He has been in power in the state for all these years. This is the first time in the last 10, 12 years that they have not been in power. The moment he wanted back power, he formed an alliance that no one had ever thought of. Uddhav Thackeray coming, Congress coming, while Congress and NCP were together. So his party and his leaders cannot stay without power. And somehow, after...
0: Arey, aap jalebi kyun bana rahe ho, Varun Singh? Out of power, in power, are they joining the BJP or not? Sida-sida bolo na, aa rahe ki nahi aa rahe?
7: Nahi, I don't think they are joining BJP. There are certain talks that are happening. But I doubt that they would join the BJP. They may
0: Sanjay Raut ko gussa kyun aata hai? Jab koi kahin ja nahi raha, sab kuch changa chal raha hai, to wo kyun gussa ho rahe?
7: See, Sanjay Raut ko har cheez pe gussa aata hai. A problem inka ye hai ki he gets angry even if... And he talks about... See, you know, he should maintain his calmness, which he cannot. He says that he and his leaders do not go and meet people who have abandoned them. But they go and meet Raj Thackeray. Raj Thackeray...
0: Because Anand ji, kai log to ab ye kehne lage hain ki Sanjay Raut, Hamza Ali, Mazari hain BJP ke. Ki jo log rukna bhi chahte na, wo... दे के उनको बीजेपी के पास भेज देंगे। अच्छे खासे आपके एमपीज वहां बैठे हुए थे, उनको इतनी गाली दी कि वो 6 जाके चले गए। बेचारे जो बचे रह गए वो भी अब सोच रहे हैं पता नहीं कब संजय जी को सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा आएगा और हमें भी छोड़ के जाना पड़ेगा। वैसे ही उन्होंने जाकर के सीधे एट द टॉप शरद पवार को ही बुरा भला कह दिया। क्यों आनंद दुबे ऐसा क्यों कर रहे हैं संजय जी? कहीं वो ब्रह्मास्त्र तो नहीं है बीजेपी का?
8: पद्मजा जी नमस्ते, सभी को मेरा सादर प्रणाम। पद्मजा जी, संजय राउत जी को कोई जमील मजारी कहता है, कोई मुझको जमील हमजा कहता है, ये सब कहते हैं लोग, क्या करें? हम लोग तो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के एक वर्कर हैं। संजय राउत जी की कल की जो बात थी वो आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं वो दोस्त अगर उस दुश्मन से जाके मिले जिससे हम बहुत नफरत करते हैं तो कहीं तकलीफ होती है। अब चूंकि संजय राउत जी कई बार कह चुके हैं कि शरद पवार साहब मेरे पिता समान है, मेरे वरिष्ठ हैं, गुरु समान है, तो आदमी भावनाओं में बहता है। इसका ये मतलब नहीं कि आदमी गलत है, लेकिन जब संजय राउत जी की और सुप्रिया सुले जी की बात हो गई, सुप्रिया जी ने कहा नहीं संजय दादा ऐसी कोई बात नहीं, तो आज उन्होंने कहा कि नहीं मेरा एक गुस्सा था जो मैंने बोला, अब मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मैं शांत होता हूं। देखिए पद्मजा जी, राजनीति में मिलना जुलना कोई नई बात नहीं, सब सबसे मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है
0: तो आपने गुस्से में आकर के खुद शरद पवार को कह दिया कि he has no credibility।
8: नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक छोटा जब बड़े के सामने आकर कोई भावनात्मक ढंग से अपनी व्यथा गाता है तो बड़ा भी उसे माफ करता है। हमें पूरा विश्वास है आदरणीय शरद पवार साहब ने एक भाई समझ के उनको माफ कर दिया, वो विषय वहीं समाप्त हो गया। okay. संजय राउत जी ने भी कह दिया, सुप्रिया ताई ने भी,
0: विषय समाप्त हो गया। आई यू एब्सोल्युटली श्योर विषय समाप्त हो गया?
8: यस, ये
0: विषय समाप्त हो गया। वरुण सिंह वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड, देन आई ब्रिंग इन सिद्धार्थ यादव एंड सीमा मलिक। यस,
7: या नो, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। आनंद जी इज डिपेंडिंग संजय राउत लाइक एनीथिंग। लास्ट टाइम व्हेन ही अब्यूज्ड द एमपी, ही वाज लाइक वो भावनाओं में बह गए। राज्यसभा एमपी फॉर मोर देन टू थ्री टाइम्स, sense of maturity. And to be very honest, he was till now NCP Sharad Pawar's Hamzani Mazari in Sushena. It was said that Sharad Pawar ke pawn the Sanjay Rao jo Sushena ko todna chahte the, break karna chahte the. He was the main curator of the MVA.
0: Bataiye Anand ji, bhavnaon mein behte behte aapke bache kuch MLA MP na beh jaye BJP ki taraf.
8: Prakaran pe sirf yahi kehna chahunga,
0: ye bahav pe thoda rok lagaiye.
8: Jab samay thoda anukool ya pratikool ho jata hai, समय हमारे थोड़ा सा खिलाफ नाराज हो जाता है, तो हमें कोई भी ज्ञान देता और हमें हंस के सुनना पड़ता है। इसके लिए मैं सभी के ज्ञान पाठ सुनूंगा, मैं मौन रहूंगा, मैं आप लोगों की भावनाओं को समझूंगा कि हमसे क्या खता हो गई है कि आपकी बातों पे हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। राजनीति में ताकत चलती है, आज राजनीति में हमारे पास ताकत नहीं है पद्मजा जी।
7: जब ताकत आप लोग क्या कर रहे हो,
8: नहीं है ताकत हमारे पास, छीन लिया है आपकी शक्तियों ने। अरे तो आपने हमारा धनुष बाण, हमारी गदा, हमारे रथ, सब नाम पहचान सब छीन लिया है, तो आपने हमें इस समय हमने आपने कमजोर और घायल कर दिया है। लेकिन घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ।
7: नहीं, घातक तो आप लोग हो नहीं, आप लोग राजनीति छोड़ दीजिए। अगर
0: घातक तो ठीक है सर, ये आपका घातक प्रहार आपके अपनी पार्टी पे ना हो जाए, सबसे बड़ा डर यही है। आप घातक किसके लिए है, घातक अपनी पार्टी पे घात मत कर दीजिएगा। एनीवे, लेट मी ब्रिंग इन सीमा मलिक। डॉक्टर सीमा मलिक, व्हाट्स गोइंग ऑन? संजय राउत इज नॉट कन्विंस्ड अबाउट योर इंटेंशंस।
9: नो, आई थिंक वी हैव कन्विंस्ड हिम। And basically, see, it was just a courtesy meeting. Everybody knows that it was a courtesy meeting.
0: This is a long-standing culture of Maharashtra. But Sanjay Raut is saying that when somebody is a gaddar, you don't extend any courtesy to gaddars.
9: But Sanjay Raut, sir, ma'am, Sanjay Raut is like a big brother to us, and as Supriya ma'am also said, that he is like a big brother to her, and I think this was some overreaction from him, and you know, a misunderstanding only. And I think he will understand. So I will only say that we respect him and for this, and I think he will understand with the time, and I think he said understood.
0: But they say, Siddharth Yadav, there is no smoke without fire, you know, and Sanjay Raut is a very perceptive man. Unko pehle hi pata chal gaya tha kaun gaddar hai aur kaun asli hai.
9: See, Pawar Sahab is a very Pawar Sahab is a very senior leader, and everybody respects him. And that also, Mr. Shinde also said that it was a real pleasure that he came to his room or something. So I think
0: it was a pleasure for the two people who met, but it wasn't very pleasurable for the others who were watching.
9: Nothing.
0: Siddharth Yadav, there is no smoke without fire. Why are you constantly creating trouble between the remaining friends? ऐसे ही बहुत कम लोग बचे हैं जो आपस में दोस्त हैं. उनमें भी आप जाकर के यू कीप क्रिएटिंग, यू नो, यू कीप क्रिएटिंग मडिंग द वाटर्स फॉर देम। व्हाई?
9: महाराष्ट्र बॉर्डर।
0: सिद्धार्थ यादव,
10: पद्मजा, आई डू अग्री, देयर इज पद्मजा।

0: कौन लेगा इनको सीरियसली, इनके अलायंस को कौन सीरियसली लेगा, वॉट इज लेफ्ट इन देम दैट एक्चुअली को जो सब्सटेंस किसी देश के नागरिक को लगेगा, क्या लगेगा इनको देख करके. All of them, they say that we are an alliance, we are working together. And you give them a moment and Anand Dubey ji will destroy all of them. अभी आप इनको थोड़ा सा मौका दीजिए, राहुल गांधी को भी destroy कर देंगे. मेरे को नहीं कहना पड़ेगा.
1: पद्मजा जी,
0: because the substance of the matter is all these parties have come together.
1: They are आदमी seriousness वहाँ रहेगा ना, जहाँ उसको seriousness रखा जाएगा. इतनी बार इन्होंने हमारा किडनी लीवर तक निकाल लिया है पार्टी के. अभी सुन रहे हैं कि ऑपरेशन 3 होने वाला है, ऑपरेशन 4 होने वाला है, ऑपरेशन 5 होने वाला है. एक तरफ क्या होता था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति होते थे, वो कहते थे चिमटे से नहीं
0: छूंगा.
1: आज वाली बीजेपी कहती है चिमटा तो छोड़िए, पूरा कुकर ही ले लूंगा. तो ये बीजेपी बदल गई. जब बीजेपी बदल गई, मछली पकड़ने वाले बदल गए, फिर मछलियां भी बदल गई, फिर चारे भी बदल गए. क्या करें, हम लोग बेचारे हो गए. आज लोकतंत्र में जो अच्छा आदमी आनंद दुबे जैसा, वो नहीं जी सकता.
0: अरे आप
1: तो नहीं आगे बढ़ सकता.
0: नहीं मान रहे, मछली मारने लग गए.
1: नहीं जा सकते हम आगे,
0: कैसे भला होगा.
1: हमारे पास साधन,
0: आप नेता है कि मछली है.
1: हमारे पास शक्तियां नहीं है,
0: आप मछली है.
1: अरे क्या मछली तो भगवान के अवतार होते हैं, मत्स्य अवतार.
0: छोड़िए शक्तियों को और संसाधनों को. हमने 50 साल विपक्ष में काम किया है.
1: मत करिए ऐसा, मछली देवता का तो अपमान मत करिए.
0: हम तो नेता ही थे, जनसेवक थे. आप मछली बन गए 10 साल के अंदर ही. क्यों बने
1: आपने हमें, आपने कांटा डाल के फंसा लिया है. क्यों करते हो हमें, हमें तैरने दो. हम जल में जीना चाहते हैं.
0: कांटा तो
1: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. हाथ लगाओगे डर जाएगी, आप बाहर निकालोगे मर जाएगी.
0: कोई दाना नहीं चाहिए, कोई कांटा नहीं चाहिए.
1: आप ऑपरेशन बंद कर दो, भारत की राजनीति
2: बदल जाएगी. ऑन अ सीरियस नोट, टू थिंग्स. वन, देवेंद्र फडणवीस, एंड आई वेरी रेयरली हर्ड हिम बी सो अनइक्विवोकल अबाउट समथिंग. ही सेड नोबडी फ्रॉम एनसीपी शरद पवार इज गोइंग टू बी जॉइनिंग अस. वी हैव नॉट रीच्ड आउट टू एनीवन. वी डोंट वांट एनीवन from NCP Sharad Pawar to join our party. But despite that, and I want you to listen in to what Rohit Pawar said. वैसे आप बार बार मछली कह रहे हैं ना, आपके मछली बनते ही बीजेपी कहीं अर्जुन ना बन जाए कि बिल्कुल मछली की आंख में अपना वो तीर मारने के लिए तैयार हो जाए. But okay, let's listen in to what Rohit Pawar said.
3: लेकिन definitely दिल्ली से या महाराष्ट्र से हमारे जो सांसद है, MPs है, उनको कॉन्टेक्ट हो सकता है या हो गया होगा. लेकिन कुछ भी होने के बाद हमारे लोग जब डीलिमिटेशन कायदा का मतदान होगा तब वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और वो डीलिमिटेशन कायदा के खिलाफ वहाँ पे वोटिंग करेंगे. ऐसे कोई भी आपको केस नहीं दिखेगा जहाँ पे वो एब्सेंट है या नेगेटिव वोटिंग वो डीलिमिटेशन के बारे में, मतलब डीलिमिटेशन के फेवर में कोई वोट करने वाला आपको हमारा MP वहाँ पे नहीं दिखेगा.
2: ओके, सो वरुण सिंह, very clearly at least Rohit Pawar is indicating this is not just a storm in a teacup. People have been contacted.
4: You know, to be very honest, let me tell you, there's a very famous saying in Maharashtra that whatever Sharad Pawar says, he doesn't do, and what he does, he never says. So whatever it is being said, so for example, if Rohit Pawar says that his MP won't vote, it may change tomorrow, because Sharad Pawar is known for, you know, saying and doing something else. And let me be very clear. No, I'm just like, you know, Anand Dubey has accepted defeat to an extent that he and his party cannot overcome the simple fact that they were the same party. For example, Sachin was an NCP MLA. He jumped to them. And they, at that time, those people who come into them are honest and they are not called at that. And Mr. Yadav keeps on saying that everyone in other party are unhappy. Eight second, Padmaja. Yesterday they declared the list, or today they declared the list of 3 MPs from West Bengal. All the 3 MPs on BJP ticket are non-BJP leaders who jumped the ship just few days ago. Aren't people in the BJP unhappy with that? So every political party, to be very honest, while they might be taking in leaders from other party and awarding them, that is what the same scenario is happening in across all the political parties. I don't see any political party any different from other political party who are not poaching on to leaders from other political parties.
2: Okay.
4: And what we just saw in Bihar right now, just a moment. We just saw in Bihar, candidate who was given a candidature, he's taking it back based on saying that his family, I'm saying, this also goes on to show that Bankipura, one of the most important seats from when Nitin Naveen was the candidate earlier, was an MLA earlier, when they had to select a candidate, it goes on to show multiple things. You know, I don't know, I'm not a politician to say this, but when I read it as a student of politics, it comes to me as if like the BJP at this moment, at this stage, appears a bit ill-prepared when it comes to smaller elections or elections as such.
2: Okay, and I will give the final word on that to Siddharth Yadav. Siddharth Yadav, it's great to have problem of plenty as long as it doesn't tip over into chaos, which is what Varun Singh is warning you about. It may just end up being chaos. Sabko aap le to lenge, karenge kya unka?
0: But Padmaja, I could not understand the extension of the argument to Bakipur, because the candidate which is fielded in Bakipur is a long time BJP worker who has worked from mandal level, booth level in Yuva Morcha, long time. We are one party which who always respects its own cadre. We are one party who can get a Rashtriya Adhyaksh from who's been a serving MLA.
2: First you gave the ticket to one person and then you changed him within 3 days. Why?
0: And that's a party decision. Padmaja, one has to understand that we are a cadre-based party. We take decisions based on our cadre. The cadre elects who the candidate should be. The cadre elects who the leader should be. Isme, matlab, isme abhi ko bhar wala to nahi aaya.
2: Sir, Abhishek Sinha bhi aapka cadre hi tha na. Abhishek Sinha bhi ABVP se hi uth karke aaye the. Abhishek Sinha kaun sa NCP se aaye the?
0: नहीं तो हमारे कार्डर में से हमको चुनना है ना पद्मजा, तो हम डिसाइड करेंगे कौन होगा कार्डर में, तो बहुत लोग हैं इतना तो द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज एब्सोल्युटली नॉट कि इतने सारे लोग हैं तो अब सबको चुनाव लड़ाना पड़ेगा नहीं तो लोग दुखी हो जाएंगे बिकॉज पीपल हु वर्क इन बीजेपी वर्क विद द इंटेंशन ऑफ सर्विंग द नेशन
2: नॉट गोइंग टू आई एम गोइंग टू हैव टू लीव इट एट दैट आई सस्पेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू वी शुड बी डूइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर बिकॉज देयर आर मेनी मेनी लेयर्स टू व्हाट इज हैपनिंग बट when it comes to the defections we are seeing across states, some possible defections, again tomorrow Charanjit Singh Channi in Punjab who has asked for a meeting with the state in charge, Bhupesh Baghel. There is discontent, discord in the opposition, but is the BJP also inviting trouble by effecting so many crossovers? We'll have that discussion at greater length. For the time being, thank you very much, all gentlemen and ma'am, for joining us on Debate One. Moving on now to the storm over the film Satluj, which is only growing bigger with every passing day. The film, which was taken off OTT platforms, is now being screened across villages. In fact, the Akali Dal and other groups are also organizing these screenings inside Gurudwaras. The problem is now, what does one do with this film? Has this ended up exacerbating some of the divisions that existed in the state along sectarian lines for a good two decades? Punjab is back to normal, but is someone now trying to reignite those fires? The entire country is now talking about Satluj, but where does this controversy go from here? Joining us is somebody who's been very vocal and very upfront, somebody who in fact has personally suffered the blowback of what the state of Punjab witnessed in the 80s and the 90s. MOS Railways, रवनीत सिंह बिट्टू इज जॉइनिंग अस. रवनीत जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने बहुत स्ट्रांगली बोला है अगेंस्ट दिलजीत दोसांझ, आप उनसे नाराज क्यों हैं? वो तो कह रहे हैं कि हक है ना हमें पिक्चर बनाने का, आप उनसे इतना गुस्सा क्यों हैं? आप उनको इम्पोस्टर फ्रॉड क्यों बुला रहे हैं?
5: नहीं, पहले तो आपका शुक्रिया आपने, क्योंकि जो जो इससे इफेक्टेड हैं उनका जो व्यू पॉइंट आना जरूरी है, थैंक यू फॉर दैट. मैं दिलजीत से ज्यादा या कम, उनसे कम गुस्सा है, पर ज्यादा जो, क्योंकि जो हनी त्रिहेन है वो भी पंजाब के हैं जिन्होंने बनाई है और अमृतसर से हैं. मैं सबसे पहले, क्योंकि रिकॉर्ड और फैक्ट्स हमेशा, और आपका नेशनल इंटरनेशनल चैनल है उसके ऊपर फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं वो, और इसको मैं चैलेंज करूंगा, और अगर कहीं भी मेरे फैक्ट गलत होंगे तो मैं अपॉलोजी करूंगा आपके सामने, और मैं माफी मांगूंगा भी मैंने ये फैक्ट्स आपको गलत दिए थे. मैं कहीं भी नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर भी सारा डाटा है जहां से ये पैसा मिलता है, या और अगर कहीं भी 25,000 जो इन्होंने अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की बात की है, अगर वो डाटा सच है तो मैं पहले तो चैलेंज करता हूं भी वो 25,000 जो डाटा फैब्रिकेट किया है उसको, उसकी लिस्ट आपके सामने दिखाएं, देश के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, और जो इनकी बातें कर रहे हैं उनके सामने रखे। 25,000 तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं 5,000 का डाटा ही, उससे नीचे भी मैं बाद में बताऊंगा, 5,000 का भी कोई डाटा इनके पास है तो ये मीडिया में रखें, अपने कमीशन के आगे रखें और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रखें। ये बिल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट में डाटा नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर कमीशन। सेकंड, दलजीत दोसांझ और ये जो है, इन्होंने गुस्से की बात है, हर पिक्चर बनाता है, ठीक है, अरे भाई सेंसर बोर्ड है, आप उसके थ्रू आ रहे हो, आप कोर्ट्स में गए हुए, आप एक ओवर द टॉप जो उसके ऊपर, जिसके ऊपर आपने पिक्चर डाली और वहां से बाहर बैठ के विदेश में, यहां कोई नहीं है ना, इंडिया से इनको लेना देना है, अब्रॉड बैठ के ये कह रहे हैं भी इसे जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने भी वो सुना है, देखा है, और ये साथ में कहा पद्मिता जी भाई, 2 दिन के अंदर अंदर ये पिक्चर जो है इसे कोई ना कोई, मतलब सीधा उनका बात था भी इंडियन स्टेट या एजेंसी से इसे उतार देंगी। वो क्यों ये उन्होंने पहले ही बात की, क्योंकि उनके मन में क्या शक था, क्या चोर था। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कहने वालों को भी पता है, सेंसर चैनल्स के ऊपर है, सिनेमा के ऊपर है, लेकिन ओटीटी पे ओवर द टॉप जो कोई भी किसी तरीके का वहां पे गवर्नमेंट का, जो बीजेपी को ये कह रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। वहां पे इन्होंने 199 की ये पिक्चर को सेल किया, साथ में जी वालों ने, जो जी 5 वाले हैं, पता नहीं उसमें क्या वो अपनी बात रखेंगे, पर उन्होंने साथ में 495-500 के बीच में ये पैकेज रखा भाई, इसमें आपको वर्ल्ड कप का जो है वो पैकेज भी 300 में बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो क्या ये चीज थी, क्या मजबूरी थी, क्यों उन्होंने डाली, क्यों उन्होंने उतारी, ये बात तो वो बता सकते हैं। लेकिन यहां से एक ऐसी बात उठी भाई, ये बीजेपी ने बंद करवा दी, बीजेपी मतलब सरकार ने बंद करा दी, तो एकदम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ढिल्लों पंजाब के, ही हैज रिटन अ लेटर टू अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे आईबी के मिनिस्टर हैं, इंडियन अपने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने उसके बाद इसके ऊपर कमेटी बनाई भी, ये पता तो लगे भी कैसे पिक्चर डली, कहां से हट गई, इसके ऊपर उन्होंने उल्टा इंक्वायरी बात की है। पर
2: दिलजीत दोसांझ हैज सेड दैट लुक, दे साइलेंस अस इन 1995, दे आर ट्राइंग टू साइलेंस अस इन 2026, एंड द ट्रूथ मस्ट गेट आउट दैट यू हैव मिस्टर खालड़ा, हु वाज एन एक्टिविस्ट, हु वाज killed in this brutal fashion only because he was highlighting these enforced disappearances, and the government of India is trying to silence us even today like they did in 1995. To wo haq ki awaaz utha rahe.
5: Agreed. Bilkul Khalra ji ki picture banayi, dikhayi. Ab meri ek request hai unse, Haneet Rehan ji se bhi, aur bade bade jo director hain, Kashmir files bani, Kerala file bani, aur ab iske upar Punjab ke liye bhi meri request hai unse. मैं ये नहीं कहता कोई मेरा उनसे मेरा हक है, जैसे उन्होंने ये बनाई एक फिल्म, एज ए इंडियन भारतीय होने के नाते उनकी दूसरी ड्यूटी भी बनती है भी, यहां जो इसके कारण एक बैकलैश, एक यंगस्टर्स में गुस्सा आ गया वन साइडेड दिखा के, एक पिक्चर वैसे होती तो आपने इसको रियलिटी कह के बनाया भी, ये रियलिटी है। अब मैं आपके सामने रखूंगा भी, इसके ऊपर भी वो जरूर पिक्चर बनाए, ये कोई वैसे ही मैंने छापे हुए अखबार नहीं है, ए 125 पैसेंजर्स मैसेकर्ड, ये जो लालड़ू के पास पंजाब में हुआ, 125 लोग, इसके ऊपर भी पिक्चर बनाए। उसके बाद आपको मैं एक और आपको हैरान करने वाली बात है, एक यंग आईपीएस ऑफिसर जिनका अविंदर सिंह, ही इज अ गुरसिख गाय, ये एक गुरसिख नए आईपीएस ऑफिसर थे जो पटियाला एनआईएस में, जो अपनी वहां पे मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे थे एनआईएस में, और ये एसएसपी पटियाला थे, इनकी वाइफ आईएएस ऑफिसर थी, इनकी बेटी 1 साल की थी, 3 साल का इनका बेटा था, कभी इनकी फैमिली में पूछा जाके इनका क्या हाल है, कैसे इन्होंने जिंदगी बतीत की, क्यों? क्योंकि ये देश की बात करते थे, नेशनलिस्ट थे और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इनके ऊपर कभी आपको रहम तरस नहीं आया। इनकी दाढ़ी भी वैसी है, इनकी भी पगड़ी वैसी है। ये सिर्फ आईपीएस ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा था, इसलिए आपने पिक्चर की इनकी बनाई, इन लोगों की। ये सच्चाई है, आपने पिक्चर बनाई इन लोगों की। खालड़ा साहब, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे, उन्होंने अच्छा काम किया, पर इनकी आइडेंटिफाई क्यों की बॉडीज के लिए? जो AK-47 डालते थे, ये इनकी इनकी आइडेंटिफिकेशन ही क्यों की? इनकी आइडेंटिफिकेशन क्यों की? और आप हैरान हो जाएंगे, उसके बाद ये बस मैसेकर टोल 40, ये बटाला में 40 पीपल, उनके परिवार में कभी देखा भी उनकी विधवा का क्या हाल है, उनकी मां का क्या हाल है, उनके बच्चों का क्या हाल है? नहीं। उसके बाद ये एक अमृतसर के गांव में, मैं मतलब कितनी इनकी किसी को याद तरस नहीं आया, इनकी कभी इनको याद नहीं आई भी किस तरीके ये लोग मारे गए। इनके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनेगी। चंडीगढ़ में रामलीला में किस तरीके से आके मार दिया गया, किसी को कोई इनका फिक्र नहीं है। तो ये लोग, और इन्होंने एक और फैक्ट, मैं बाकी बात करूंगा, ये इन्होंने बोला है भी विटनेस इन खालड़ा मर्डर हु हैड बीन टर्न्ड हॉस्टाइल अलाइव।
2: क्योंकि आपने उस पिक्चर की बात की, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई हमने एक सब्जेक्ट बनाया है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई सोच समझ के कोई वन साइडेड ही दिखाया है, वी शोड एवरीथिंग दैट जसवंत सिंह खालड़ा वॉज डूइंग, आपको ये सब अगर मैसेकर्स दिखाने हैं आप पिक्चर बना लीजिए, हमारी पिक्चर मत रोकिए।
5: नहीं नहीं, हमने कहां रोकी पिक्चर तो उन्होंने जो आग लगाने की कोशिश उन्होंने की, और बोला क्या
2: आप कह रहे हैं जानबूझकर को रिलीज किया गया आग लगाने के लिए, कौन आग लगाना चाहता?
5: बिल्कुल बिल्कुल, वन साइड देखो, फिर दूसरी साइड क्यों नहीं दिखाई? एक एक मैं कह रहा हूं, बिल्कुल जिन पुलिस वालों ने गलत काम किए, आई थिंक मोर देन 127 केसेस हैं जो CBI ने, वो भी तो इंडियन एजेंसीज हैं जिन्होंने टेकअप किया। और आप हद ये है, आप में मेरे ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी उसमें आप दिखा रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर 31 अगस्त को उनका असैसिनेशन हो जाता है, और उस टाइम तक खालड़ा साहब जसवंत सिंह खालड़ा जी को कभी पुलिस ने कोई केस नहीं, कोई FIR नहीं, कभी उनको उठाया नहीं गया जब पीक ऑफ टेररिज्म था। मेरे ग्रैंडफादर 31 अगस्त को वो उनका असैसिनेशन हो जाता है, 6 सितंबर को जो कोर्ट किया है उनको पुलिस ने उठाया, और अक्टूबर में जाके वो उसमें पिक्चर में बताया गया है भी उनको मार दिया गया। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के कौन से मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, ये देखना किसका काम है? आप बात एकदम हर चीज उसमें फैक्ट के बाहर, और जो दिलावर सिंह दिखाया ह्यूमन बम, उसकी बात की जोड़ी गई है, क्यों ये फैक्ट इतने बड़े गलत दिखाए? वो तो मेरे ग्रैंडफादर से संबंधित है। जो दिलावर सिंह था वो एक अलग SPO था, उसका कोई भाई नहीं मारा गया था, कोई उसका गांव ने जसवंत सिंह खालड़ा से नहीं जुड़ा हुआ था, वो तो अलग एक चीज थी, उसको उससे जोड़ दिया गया भी, उसने वहां पे ये किलिंग देखी और आके वो ह्यूमन बम बन गया। और जो उन्होंने कहा है, इसका ये जिंदा आदमी है, इसका नाम उन्होंने अलग पिक्चर में कुछ रखा है, जो उनको खाना खिलाया था जिसने भी, उसको भी मार दिया गया, पिक्चर में दिखाया गया है केएल सिंह।
2: क्योंकि आपने अपने दादाजी की बात की है, ऑन अ पर्सनल नोट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत से लोगों ने इस पर एतराज भी किया है दैट देर इज ऑलमोस्ट ग्लोरिफाइंग म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड व्हेन द असैसिनेशन ऑफ सरदार बेअंत सिंह जी इज शोन देयर। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट ऑन अ पर्सनल नोट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज यू नो समबडी हू इज इन द BJP अ मिनिस्टर, बट एज अ ग्रैंडसन, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सीन?
5: देखो बंदा जी, कई बार बहुत बहुत अफसोस होता है, दुख होता है, हम लोगों ने तो सब कुछ इस देश के लिए खोया, और एक ही चीफ मिनिस्टर है जिसने जम्मू कश्मीर में बहुत हालात ऐसे रहे, गवर्नर रूल रहा, वहां पे फौज लगी, यहां पे सरदार बेअंत सिंह जी लोगों के इलेक्टेड होके लोगों ने चुना, उन्होंने जो यहां पे किसी की बरात नहीं चढ़ती थी पंजाब में, अगर कोई बरात लेके जाता था घोड़े पे उसे उसके साथ उसी गांव के जो पौंड छप्पड़ बोलते हैं उसे उसमें वहां पे उसका मुंह काला किया जाता था। और कोई मेरी बहन आप इस पे प्रोग्राम जरूर करना, उस टाइम के पुराने रिपोर्टर्स आपके सामने होंगे, जो मेरी बहन मेरी बेटी अगर वो अपनी मर्जी से सूट डाल लेती थी, जीन्स डाल लेती थी, अगर वो दो गुत्ते पीछे नहीं करती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, स्कर्ट जहां ये तो बहुत ही दूर सिर्फ एक ड्रेस थी हर स्कूल में पंजाब और चंडीगढ़ में, वाइट कुर्ता और साथ में ब्लैक कलर की सलवार और केसरी चुन्नी, तालिबान का राज था यहां पे। आज वो चीजें बदल गई। मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आ गई 95 को, और आप आज अंदाजा लगा लीजिए 36 और प्लस 31 उसके बाद जो जनरेशन पैदा हुई है उसके मन में क्या आएगा। इन्होंने इस आग को जन्म दिया है। और यहां पे कोई ये पिक्चरों की बात करता है, मैं दिलजीत दोसांझ से पूछना चाहता हूं और हनी त्रेन से ही पूछना चाहता हूं भी, कोई उस टाइम पंजाब में थिएटर में कोई पिक्चर लगती थी, कोई सिंगर कोई आर्टिस्ट क्या पंजाब में खुला अखाड़ा, मतलब जैसे गुरदास मान गाते हैं कॉन्सर्ट, मैं शर्त ये कहता हूं भाई अगर कोई 80 से 92 पहली बार कोई फिल्म इंडस्ट्री, मेरे ग्रैंडफादर ने धर्मिंदर अमरीश पुरी जितने लोग से तमस्सम ये लोग जो पंजाब से जुड़े हुए थे, कोई पंजाब में पिक्चर नहीं, जो सबसे बड़ा हमारा धर्मिंदर के कजन थे वरिंदर उनको शूट किया गया, और जिन्होंने प्रनीति जो एक हमारी एक्ट्रेस है जिन्होंने एक चमकीला नाम की पिक्चर बनी जिसमें इन्होंने ही काम किया है, दिलजीत दोसांझ ने चमकीला, वो सबसे जिसने गंदे गाने गाए हैं, मैं कह नहीं सकता लेडीज के हमारी बहनों के लिए, उसको भी उस टाइम उसने गाने गाए, वो माना नहीं क्योंकि बाकी सब रोके हुए थे, चमकीला ने और अमरजीत कौर ने एक दो कैसेट निकाली, उनको दिन में दोनों को मारा गया, टेररिस्टों ने मारा और उनकी बॉडी लेने भी कोई फैमिली वाला नहीं आया, वो भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी सी थी। तो उसके ऊपर दलजीत ने पिक्चर बनाई, पर उसमें दलजीत ने ये नहीं दिखाया, चमकीला और प्रनीति ने ये नहीं दिखाया भी दोनों को किसने मारा, उसके ऊपर भी सच्चाई दिखाते ना भी चमकीला की मैंने उसमें पैसे बना लिए क्योंकि उसमें 84 में पैसे बना लिए और बातें थी, इनके लिए सिर्फ इनकम है। और यहां मैं कह रहा हूं भी मैं इसमें चैलेंज करता हूं जो आपके चैनल पे सुनेगा, अगर पंजाब में, और हमारे पे गुस्सा क्यों भाई, गुस्सा करना है तो लोगों कांग्रेस पे करो, जिस कांग्रेस ने, जिस इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने गोल्डन टेंपल पे अटैक किया, हमारे गुरुद्वारे ढाए, 84 में 84 जो हर जगह सिखों को मारा गया, हर देश के कोने कोने में मारा गया, उस चीज को आग लगी हुई थी, जो मेरे ग्रैंडफादर ने तो वो आग आके ठीक करी, उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने आके उसे ठीक किया और अपनी शहादत देती, उसके बाद पंजाब आज खुशहाल है, पंजाब आज तरक्की कर रहा है। पर आज फिर मैं इसलिए तड़फ रहा हूं भी आज फिर 22 पुलिस स्टेशनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए गए हैं, 22 पुलिस स्टेशनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए गए हैं ये, और ड्रग्स की में
2: तो आप कह रहे हैं कि ये दोबारा इसको एक तरीके से फाइनली द वे पीस हैज रिटर्न टू पंजाब, उसको दोबारा एक तरीके से देयर इज एन एफर्ट टू ट्राई एंड पुल इट बैक इनटू द पास्ट, बट हाउ डू यू स्टॉप इट रवनीत सिंह बिट्टू, हाउ डू यू स्टॉप इट, बिकॉज इवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस फिल्म हैज बीन पुल्ड आउट, इट्स बीइंग स्क्रीन्ड इन गुरुद्वारास, द एसजीपीसी टुक आउट अ मार्च टुडे, दे आर होल्डिंग स्क्रीनिंग्स इन विलेजेस इन गुरुद्वारास, देर आर एलईडी ट्रक्स विच आर यू नो ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस द विलेजेस ऑफ द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान। अब तो ये रुक नहीं सकती ना, कहीं इसमें बैन लगा के गलती तो नहीं कर दिया? अब आप एसजीपीसी को कैसे रोकेंगे?
5: मैं यही कह रहा हूं भी बैन लगा ही नहीं, ये प्रोपेगंडा है। ओटीटी के ऊपर उन्होंने पिक्चर डाली, खुद डाल के खुद उतार ली। इसमें गवर्नमेंट का, बीजेपी का, मैं एक मिनिस्टर होने के नाते कह सकता हूं, बिल्कुल कोई रोल नहीं है।
2: ये तो आईटी मिनिस्टर के कहने पे हटाया गया है। आईटी मिनिस्टर हैज आस्क्ड फॉर इट टू बी पुल्ड आउट।
5: इसके ऊपर इंक्वायरी है जो वो मिनिस्ट्री ने करी है। बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं। बीजेपी तो यहां पंजाब में ना यहां गवर्नमेंट में थी, ऊपर ना सेंटर में गवर्नमेंट थी, वो तो कांग्रेस है, उसे जवाब देना चाहिए भाई ये हालात क्यों बनाए उस टाइम, क्यों सिखों के साथ ये हुआ। और अकाली दल जो कर रहा है, अकाली दल के लिए जो मेरे रिस्पेक्टेड मिसेज वाइफ ऑफ खालड़ा जी, उन्होंने आके सीधा, आप उसको भी दिखा सकते हैं, बहुत चैनलों पर चला है, उन्होंने सीधा कहा भी 97 में हमें लगा था भी प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि वो अकाली दल के एक्टिविस्ट थे, अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी थे खालड़ा साहब, भाई बादल साहब को जब वो 97 में सीएम बने, सारी फैमिली गई, हमने जाके कहा भी अब खालड़ा साहब के केस के बारे में देखिए, उन्हें ढूंढिए, क्योंकि उस टाइम तक उन्हें पता नहीं था भी उन्हें मार दिया गया है। तो बादल साहब ने, अकाली दल ने जो ये ढोंग रचा है, उन्होंने कहा बीबा जी आप मिनिस्ट्री ले लीजिए, चेयरमैन ही ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, बट खालड़ा साहब की बात मत कीजिए। ये उनकी वाइफ ने। और मैं एक और बात कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं उनके वाइफ रिस्पेक्टेड खालड़ा साहब के पे, मैं उनको जरूर मिलूं, उनके पास बैठूं, भाई जाने किसकी गई है, परिवार आपका मेरा और बाकी जो सारे हिंदू ऑफिसर पुलिस वाले और पंजाब भी सिख, और आज उस पे ऊपर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? जब वो जिंदा थे उनको आज तक जो कौमी शहीद जो एसजीपीसी फोटोज लगाती हैं दरबार साहब के साथ म्यूजियम में, कौमी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। चार बार उन्हें इलेक्शन लड़ाई गई, मिसेस खालड़ा को चार बार पार्लियामेंट और विधानसभा किसी ने मदद नहीं की, उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो हम कोशिश करेंगे
2: उनका इस तरीके से पॉलिटिकल उनको वेपनाइज किया जा रहा है,
5: वेपनाइज किया, और मैं कोशिश करूंगा जब वो बाहर से आए हम दोनों इकट्ठे बैठेंगे, जिन्होंने दुख जे झेला है उस पंजाब की लड़ाई में, हम इकट्ठे बैठ के ये जो पॉलिटिक्स करते हैं उनका मुंह बंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी।
2: पर रणवीर जी ये बताइए कि जब आपकी, आपका एक स्टेटमेंट है उसको बहुत एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, जब आपने कहा था कि भाई अगर आपको जसवंत खालड़ा जी पे बनानी है, पिक्चर बनानी है, अगर आपको ये पिक्चर बनानी है कि कैसे जो इनोसेंट सिख थे उनके ऊपर अत्याचार किया पुलिस ने, तो आप दिलवान बस मैसेकर पे भी बनाइए, आप लालुड़ू बस मैसेकर पे भी बनाइए, आप फतेहाबाद बस किलिंग पे भी बनाइए। तो ये एक तरीके से माहौल खराब कर रहा है, क्योंकि फिर से उस वक्त जो एक खाई थी या जो एक दरार पैदा करने की कोशिश की गई थी सिखों और हिंदुओं के बीच में, उसको एक बार दोबारा, दोज क्रैक्स आर गोइंग टू बी रिवाइव्ड एंड दैट्स वेरी डेंजरस, इट्स प्लेइंग विद फायर।
5: नहीं पदमदा जी, बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुओं की बात अकेले नहीं कर रहा, हिंदू तो बेचारे, मैं, हम बैठे हैं हमारे जैसे लोग हिंदुओं को बिल्कुल उनकी रक्षा करने के लिए, मेरे दादाजी, हिंदुओं की बात नहीं है अकेली। जो ये मैंने आपको दिखाया, ये कौन, ये एसपी साथ में केपीएस गिल की किलिंग हुई, और ये कौन कह सकता है भी ये अकेले 22 डीएसपी मरे। और मैं अगले दिनों में आपके चैनल पे भी भेजूंगा, और मैं हर सिख के घर ही जाऊंगा जो किलिंग हुई है, हिंदू के घर नहीं जाऊंगा, ये चीज नहीं करेंगे। लेकिन जो हर सिख मरा है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा था पिछले लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ही 136 जो टेररिस्ट ने किलिंग की है अकेले लुधियाना में, वो सिख फैमिलीज हैं, हिंदू और यहां ये लड़ाई नहीं थी, ये तो दिखाई जाती है। ये बस में उतार के जो मारे वो अकेले हिंदू थोड़ी थे, वो सिख हैं, उसमें भी पंजाबी हैं, एससी हैं। ये कोई अगर गलत बात करे, ये जलंधर स्टेशन पे ब्लास्ट हो गया, इसमें किसको पता था कौन सिख है? ब्लास्ट में कोई आइडेंटिफाई कर सकता है भी सिख है या स्टेशन पे? अभी जहां प्रधानमंत्री जी आएंगे
2: जी।
5: हम उसे जलंधर स्टेशन में उसे बना रहे हैं, स्टेशन पे रेलवे ब्लास्ट हो, इसमें कौन पता, कोई बिहारी था, कोई यूपी वाला था, कोई पंजाब वाला था, किसको पता है?
2: मेरे को ये बताइए कि दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड मेनी पीपल वर्क टू फाइनली गेट पंजाब टू वेयर इट इज टुडे। Your dadaji was one of them.
5: KPS Gill was Sikh. वो कोई हिंदू थे, वो तो सिख थे.
2: KPS
5: Gill कोई हिंदू था.
2: Correct. KPS Gill के ऊपर भी अब बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं. How do you analyze his legacy? For you, is KPS Gill a butcher in khaki or a hero who got rid of militancy in Punjab? How do you evaluate his legacy?
5: अदनान जी, मैं इस बात का आज KPS Gill जो थे, वो असम केडर के ऑफिसर थे, असम से यहाँ आए गए, लाए गए क्योंकि पंजाब में डीजीपी रेवैरो रहे, उन्होंने बहुत काम किया, पर KPS Gill चले गए, पहले कामयाब नहीं हुए, फिर दूसरी बार फिर आए, सेकंड टर्म उनको दी गई. बिल्कुल KPS Gill जहां ये वो पहले भी थे, रिवेरो साहब उससे भी मजबूत थे, ये मारने से काम नहीं होता, अकेला भी गोलियां मार दी काम हो गया, नहीं. गवर्नरेट रूल था, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने गवर्नरेट रूल लगा के, मिलिट्री लगा के, कांग्रेस ने फौज लगा के देख लिया था, मार मार के. मारने से नहीं होता. जब सरदार बेअंत सिंह आए, उन्होंने पंचायत इलेक्शन करवाई, उन्होंने काउंसलर की इलेक्शन करवाई, उन्होंने नौजवानों को सिनेमा दिया, गाने वाले दिए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाए, नौकरियां दी, इंडस्ट्री लेके आए, इंडस्ट्री वालों को प्लॉट दिए, अभी और इंडस्ट्री लगाओ. तो ये सारी चीजें हुई, ये पुड्डा जैसे नई नई मिनिस्ट्रीज बनी. ये अकेला मारने से नहीं हुआ. आप सोचो भी मारने से खत्म हो गए, नहीं. आप जरूर पंजाब आइए, यहां देखिए और स्टोरीज कीजिए भी किस तरीके से सरदार बेअंत सिंह और सारी पार्टी, चाहे वो कॉमरेड था कोई, चाहे बीजेपी वाला था, चाहे कोई अकाली दल वाला था, सबने मिलके काम किया. आज पॉलिटिकल और चीज है, आज और रोटियां सेकना चाहते हैं इसलिए ये चीजें हो रही हैं, नहीं. सब पार्टियों ने इकट्ठे होकर यहाँ लड़ाई लड़ी है.
2: थैंक यू वेरी मच रवनीत जी. थैंक यू.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
11: सबका राजा आकर मसाला।
12: We are over Jimmy।
13: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
14: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
15: I'm delighted to be a chairman of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
16: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
17: I think it's also important that how they are reshaping the industries, commercial activities which they are into. And it's a very judicious mix of people to choose from. My compliments to the team.
14: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
2: द थग यू सी इज शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ऑफ डोंबिवली, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। आई हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू टुनाइट। विल योर गवर्नमेंट इमीडिएटली अरेस्ट दिस राउडी रमेश म्हात्रे?
3: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
4: And joining me live from Mumbai is Ramesh Bhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
5: Humko haq हमारे पार्टी के बाल से ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
4: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप?
5: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
4: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
5: प्रशिक्षण हम हमारे
4: नहीं मांगेंगे
5: सर।
0: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
6: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
7: Really?
6: Fashion that made you gag, films that made you fangirl, art that made it to the gram, and trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
8: They say morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the Right Insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12, your edge for every move.
1: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
9: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?

0: important, and if that is not followed, then action would be taken accordingly, irregards of be it the VIP treatment or the privilege that these elected representatives they get. However, the court is clear of the view that such conditions and the accused in these scenarios will not be spared at all.
1: And the other news that we're tracking in from the state of Maharashtra is the big buzz over Sharad Pawar and Eknath Shinde's meeting. It was not about a bouquet of 15-minute chat and a room that had changed hands has sent Maharashtra politics in buzzing over Sharad Pawar's leaning. It all started on Wednesday when the NCP SP chief walked into the assembly for a meeting on the Maharashtra-Karnataka border issue. Shinde reportedly cut short a cabinet meeting and welcomed a veteran with a bouquet, spent 15 minutes with him in his office, and then here's where it gets curious. Pawar stayed back and held a meeting of his own party legislators. The timing of the meeting drew sharp reactions from ally Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut, who asked, why did Pawar pick a traitor's chamber? Here are some reactions that are coming in on the top political developments that creating buzz in the state of Maharashtra.
2: Pawar sahab hamare supreme leader hai Mahavikas Agadi ke. हमारे नेता है. कल हमारी भावना थी, हमने कल उस बारे में व्यक्त की है. नहीं देखिए, एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये हम मानते हैं. जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी. ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में. तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे. मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता.
3: नहीं, मेरी संजय राउत साहब से कल बात हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको कोई गलत खबर किसने दी थी, कुछ नहीं.
4: अच्छा, जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता है?
3: कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है. एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम हैं, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे.
5: भाई शरद पवार जी विधान भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे, क्या हुआ था वो इस वक्त में?
3: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कम्युनिकेशन, स्टॉर्म इन अ टी कप.
4: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने.
3: किसने बोला आपको? एक मिनट भी नहीं मिला. वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले. छोटी सी पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है.
6: राजनीति में और विशेषतः संसद और विधिमंडल में, विधानसभा में, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते. हमारे विचार अलग होते हैं, हम कड़ा प्रहार करते हैं हाउस में, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं, जो आज नहीं है. लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस समय एक अलग वातावरण था. एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी. हाँ, एक बात जरूर है, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, वो किसे मिले, क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी है, या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था उसे आप सम्मान दोगे, उसे जाके मिलोगे, तो उनको ठेस तो लगेगी. तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ.
1: Through the journey of the JRC and NDTV campaign, Child Marriage Free India, we have brought you stories from India's villages and from the farthest, most remote corners of the country. Today, we turn our lens on India's cities. For every 2 girls married off in villages, 1 girl is married off in an urban space, an alarming reality that is echoed by the latest National Family Health Survey, or the NFHS-6. This is a crime which often exists within touching distance of our own lives. We take a look at the story from Pune, where a girl was saved from child marriage.
7: Every single day, lakhs of people arrive in our cities to chase their dreams and build their lives. Yet, within the folds of these concrete jungles, thrives the insidious reality of child marriage. More often than not, it impacts girls and women known to us, who occupy the same spaces as you and I, removed just a degree or two from our own lives. 16-year-old Webhavi is

0: one such girl, living a stone's throw from the bustling IT hub of Pune city. She was on the verge of being married off to a 25-year-old man when she was rescued in the nick of time.
1: Actually, एक मेरी फ्रेंड है जो अहिल्या नगर में रहती है, तो उसने मुझे ऐसे ही कॉल किया था शाम के टाइम पे और हमारी बात चल रही थी, तो उसने मुझको शेयर किया कि अरे मुझे ना हल्दी में जाना है करके। तो उसको मैंने पूछा किसकी हल्दी है, तो बोले नहीं मेरी बाजू में ही रहती है एक लड़की और उसकी शादी है और उसका जो एज है वो कम है। तो उसको पता ही था कि मैं काम करती हूँ और उसको ये भी पता था कि बच्ची की जो शादी है वो पूना में होने वाली है। मैंने मेरे एनजीओ को बताया इसके बारे में और उसके बाद मैंने चाइल्डलाइन को इन्फॉर्म किया, CWC को इन्फॉर्म किया और इनको इन्फॉर्म करने के बाद हमने वहाँ पे जो स्पॉट था वहाँ पे हम चले गए। वहाँ पे जाने के बाद हमारे साथ में चाइल्डलाइन का टीम था और जैसे ही हमने इन्फॉर्म किया था कि वहाँ के स्थानिक जो पुलिस थे वो वहाँ पे थे, ग्राम सेवक था, BDO था और देन और भी आंगनवाड़ी सेविका जो थी वो भी हमारे साथ में थी। हम लोग सब वहाँ पे पहुँचे और बच्ची का जो एज था तो सबसे पहले हमने वो वेरीफाई किया, देन जो फैमिली थी उनको बताया कि बच्ची का जो एज है वो कम है तो ये चाइल्ड मैरिज होता है और अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो तो आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। तो उनका काउंसलिंग किया दोनों भी फैमिलीज़ का और फैमिली को समझाया, देन वो समझ गए कि नहीं बाबा कि हमें चाइल्ड मैरिज नहीं करना है।
0: The collective action of Child Helpline, the Gram Sevak, the Block Development Officer, Indapur Police, an Anganwadi worker and the local NGO, Committed Communities Development Trust or CCDT, a partner NGO of the Just Rights for Children Network, stopped the wedding before it could happen. As a result, no arrests were made. Today, CCDT continues to follow up regularly with Vaibhavi and her family to ensure her safety, education and overall well-being. Vaibhavi is still living safely at home with her family and is now preparing for her class 10 exams. Child marriage is a crisis thriving right inside our urban centers, fueled by migration, economic pressure and a lack of awareness and action on our part. Ultimately, child marriage is a crime and a grave violation of human rights, regardless of its geography.
2: ग्रामीण में तो केसेस वैसे आते हैं हमको, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरी भाग में नहीं आते। शहरी भाग से भी केसेस हमको आते हैं, शहरी भाग में भी जो भी वहाँ के जो ये है कम्युनिटीज़ वगैरह है जो कि रूरल मतलब जो चाल वगैरह जो बोलते हैं उस एरिया के भी लोग कैसा रहते हैं उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है या फाइनेंशियली उनके इशू रहते हैं, उनको फाइनेंशियली वो बच्ची को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनको दिमाग में क्या रहता है कि बच्ची की शादी करवा दो और जो है बच्ची की शादी करवा दिए तो उनके ऊपर से जिम्मेदारी निकल जाएगी।
0: Vaibhavi's story tells us that vulnerable girls can be protected and given a second chance at childhood when vigilant local communities and civil society networks work together. Each one of us can make a difference. Stay alert to the warning signs in your own ecosystem. Your one act of vigilance can rescue a life and save a childhood.
3: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: greeting and welcomed a veteran with a bouquet. Spent 15 minutes with him in his office, and then here's where it gets curious. Pawar stayed back and held a meeting of his own party legislators. The timing of the meeting drew sharp reactions from ally Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut, who asked, why did Pawar pick a traitor's chamber? Here are some reactions that are coming in on the top political developments that creating buzz in the state of Maharashtra.
1: नाराज कल से आज नहीं है, पवार साहब हमारे सुप्रीम लीडर है, महा विकास आघाड़ी के हमारे नेता है। कल हमारी भावना थी, हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है। नहीं देखिए, एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, यह हम मानते हैं। जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी। ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में। तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे? मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता।
2: मेरी संजय राउत साहब से कल बात हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको कोई गलत खबर किसने दी थी? कुछ नहीं।
3: अच्छा, जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता है?
2: कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है। एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम हैं, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे।
4: भाई शरद पवार जी विधान भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे, क्या हुआ था वो इस वक्त में?
2: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कम्युनिकेशन, स्टॉर्म इन अ टी कप।
3: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने?
2: किसने बोला आपको? एक मिनट भी नहीं मिला। वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले। छोटी सी, पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है।
5: राजनीति में और विशेषतः संसद और विधिमंडल में, विधानसभा में, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। हमारे विचार अलग होते हैं, हम कड़ा प्रहार करते हैं हाउस में, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं, जो आज नहीं है। लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम, केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस समय एक अलग वातावरण था, एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर है, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, वो किसे मिले, क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी है, या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था उसे आप सम्मान दोगे, उसे जाके मिलोगे, तो उनको ठेस तो लगेगी। तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ।
0: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: The police sought 5 days of custody. However, based on the grounds that were presented, Ramesh Mathre has been sent to police custody until the 13th of July. And the grounds that were presented by the police, it stated that they wanted to investigate whether there was a bigger conspiracy behind this matter to be conducted, and simultaneously that there needs to be other identifications to be done as far as the entire KDMC hospital doctor assault incident is concerned. However, keeping Mathre's medical condition in check, the court has stated that after every 6 hours, Ramesh Mathre will be taken for his checkup, and in these 6 hours in between, if his health deteriorates, there would be a medical practitioner that will be brought in for his checkup. And henceforth, the court here has clearly ensured that be it a public representative or any other ordinary person, responsibility, especially social responsibility, is important, and if that is not followed, then action would be taken accordingly, irregards of be it the VIP treatment or the privilege that these elected representatives they get. However, the court is clear of the view that such conditions and the accused in these scenarios will not be spared at all.
1: And the other news that we're tracking in from the state of Maharashtra is the big buzz over Sharad Pawar and Eknath Shinde's meeting. It was not about a bouquet of 15-minute chat, and a room that had changed hands has sent Maharashtra politics in buzzing over Sharad Pawar's leaning. It all started on Wednesday when the NCP SP chief walked into the assembly for a meeting on the Maharashtra-Karnataka border issue. Shinde reportedly cut short a cabinet meeting and welcomed a veteran with a bouquet, spent 15 minutes with him in his office, and then here's where it gets curious. Pawar stayed back and held a meeting of his own party legislators. The timing of the meeting drew sharp reactions from ally Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut, who asked, why did Pawar pick a traitor's chamber? Here are some reactions that are coming in on the top political developments that are creating buzz in the state of Maharashtra.
2: Pawar sahab hamare supreme leader hai, Mahavikas Agadi ke. हमारे नेता है. कल हमारी भावना थी, हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है. नहीं देखिए, एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये हम मानते हैं. जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी. ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में. तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे. मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता.
3: नहीं, मेरी संजय राउत साहब से कल बात हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको कोई गलत खबर किसने दी थी, कुछ नहीं.
4: अच्छा, जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता है?
3: कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है. एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम हैं, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे.
5: भाई शरद पवार जी विधानसभा भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे, क्या हुआ था वो इस वक्त में?
3: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कम्युनिकेशन है. स्टॉर्म इन अ टी कप.
4: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने.
3: किसने बोला आपको? 1 मिनट भी नहीं मिला. वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले. छोटी सी पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है.
6: राजनीति में और विशेषतः संसद और विधिमंडल में, विधानसभा में, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते. हमारे विचार अलग होते हैं, हम कड़ा प्रहार करते हैं हाउस में, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं, जो आज नहीं है. लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस समय एक अलग वातावरण था. एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी. हाँ, एक बात जरूर है, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, वो किसे मिले, क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी, या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था, उसे आप सम्मान दोगे, उसे जाके मिलोगे, तो उनको ठेस तो लगेगी. तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ.
1: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: मंत्री बनेंगे उसके बाद, या फिर इश्यू बेस्ड सपोर्ट, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो उसके अलावा मेरे को कोई पर्सनल कोई जानकारी नहीं।
1: अगर ये इन्फॉर्मेशन माननीय पृथ्वीराज चौहान साहब को है तो मैं लीड करके उनको जाके मिलूंगा, वो यादि उनसे मेरे पास लेने के बाद मैं खुद जो कोई वो 6-7 MPs है उनको जाके विनती करूंगा कि आप एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना में काम करें, इससे इसमें ही आपका भला है।
2: टुडे पंजाब कांग्रेस इज इन अ क्राइसिस इन अ कॉन्फ्लिक्ट मोड, ऑन द अदर हैंड राहुल गांधी इज ऑन अ हॉलिडे मोड। द रियल क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड इज इन ऑल दिस एपिसोड कांग्रेस एपिसोड वेयर इज राहुल गांधी, इज हैज राहुल गांधी बीन इन द कंट्री फॉर द पास्ट 20 डेज, इज राहुल गांधी टुडे इन द कंट्री, द क्लियर आंसर इज नो।
3: All right, let's take this across to the guests joining us now. We have Anand Dubey from the Shiv Sena UBT, Dr. Seema Malik from NCP Sharad Pawar, Siddharth Yadav of the BJP joins us. But reveal, what is the truth? Varun Singh, what's going on? Is the NCP Sharad Pawar splitting, joining the BJP, staying where it is? Why is Sanjay Raut so hurt, or is it a storm in a teacup? What are you hearing?
4: Oh, storm in a teacup itself explains what exactly Supriya Sule wanted to say. And not only that, Sanjay Raut, I don't know what exactly he's up to. One day he's very unhappy and the other day he's very happy with calling Sharad Pawar as the supreme leader. See, one thing is very clear. Not all of the leaders in the NCP Sharad Pawar camp want to join the Congress. That was floated, one of the ideas that was floated to them. And it is true that NCP Sharad Pawar, if he wants to merge his party, he wants to be in power. He has been in power in the state for all these years. This is the first time in the last 10, 12 years that they have not been in power. The moment he wanted back power, he formed an alliance that no one had ever thought of. Uddhav Thackeray coming, Congress coming, while Congress and NCP were together. So his party and his leaders cannot stay without power. And somehow, after...
3: अरे यार जलेबी क्यों बना रहे हो वरुण सिंह, आउट ऑफ पावर इन पावर, आर दे जॉइनिंग द बीजेपी और नॉट? सीधा सीधा बोलो ना, आ रहे कि नहीं आ रहे?
4: नहीं नहीं, आई डोंट थिंक दे आर जॉइनिंग बीजेपी। देयर आर सर्टेन टॉक्स दैट आर हैपनिंग, बट आई डाउट दैट दे वुड जॉइन द बीजेपी।
3: संजय राउत को गुस्सा क्यों आता है जब कोई कहीं जा नहीं रहा, सब कुछ चंगा चल रहा है, तो वो क्यों गुस्सा हो रहे हैं?
4: See, Sanjay Raut को हर चीज पे गुस्सा आता है। अब प्रॉब्लम इनका ये है कि he gets angry even if and he talks about, see, you know, he should maintain his calmness, which he cannot. He says that he and his leaders do not go and meet people who have abandoned them, but they go and meet Raj Thackeray. Raj Thackeray,
3: क्योंकि you know, क्योंकि क्योंकि आनंद जी, कई लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि संजय राउत हमजा अली मजारी हैं बीजेपी के, कि जो लोग रुकना भी चाहते हैं ना, वो उनको गाली दे के उनको बीजेपी के पास भेज देंगे। अच्छे खासे आपके MPs वहां बैठे हुए थे, उनको इतनी गाली दी कि वो 6 जाके चले गए। बेचारे जो बचे रह गए वो भी अब सोच रहे हैं, पता नहीं कब संजय जी को सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा आएगा और हमें भी छोड़ के जाना पड़ेगा। वैसे ही उन्होंने जाकर के सीधे एट द टॉप शरद पवार को ही बुरा भला कह दिया। क्यों आनंद दुबे ऐसा क्यों कर रहे हैं संजय जी? कहीं वो ब्रह्मास्त्र तो नहीं है बीजेपी का?
5: पद्मजा जी नमस्ते, सभी को मेरा सादर प्रणाम। पद्मजा जी, संजय राउत जी को कोई जमील मजारी कहता है, कोई मुझको जमील हमजा कहता है, ये सब कहते हैं लोग, क्या करें? हम लोग तो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के एक वर्कर हैं। संजय राउत जी जी की कल की जो बात थी वो आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं वो दोस्त अगर उस दुश्मन से जाके मिले जिससे हम बहुत नफरत करते हैं तो कहीं तकलीफ होती है। अब चूंकि संजय राउत जी कई बार कह चुके हैं कि शरद पवार साहब मेरे पिता समान है, मेरे वरिष्ठ हैं, गुरु समान है, तो आदमी भावनाओं में बहता है। इसका ये मतलब नहीं कि आदमी गलत है, लेकिन जब संजय राउत जी की और सुप्रिया सुले जी की बात हो गई, सुप्रिया जी ने कहा नहीं संजय दादा ऐसी कोई बात नहीं, तो आज उन्होंने कहा कि चलिए मेरा एक गुस्सा था जो मैंने बोला, अब मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मैं शांत होता हूं। देखिए पद्मा जी, राजनीति में मिलना जुलना कोई नई बात नहीं, सब सबसे मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है तो
3: आपने गुस्से में आकर के खुद शरद पवार को कह दिया कि ही हैज नो क्रेडिबिलिटी।
5: नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक छोटा जब बड़े के सामने आकर कोई भावनात्मक ढंग से अपनी व्यथा गाता है तो बड़ा भी उसे माफ करता है। हमें पूरा विश्वास है आदरणीय शरद पवार साहब ने एक भाई समझ के उनको माफ कर दिया, वो विषय वहीं समाप्त हो गया। okay. संजय राउत जी ने भी कह दिया, सुप्रिया ताई ने भी,
3: विषय समाप्त हो गया। आर यू एब्सोल्युटली श्योर विषय समाप्त हो गया?
5: यस, ये
3: विषय समाप्त हो गया। वरुण सिंह वेरी खुशी रिस्पॉन्ड बना ब्रिंगिंग सिद्धार्थ यादव एंड सीमा मलिक। यस
4: या नो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, आनंद जी इज डिपेंडिंग संजय राउत लाइक एनीथिंग। लास्ट टाइम व्हेन ही अब्यूज्ड द एमपी, ही वाज लाइक वो भावनाओं में बह गए। शरद पवार के पॉन थे संजय राउत, जो शिवसेना को तोड़ना चाहते थे, ब्रेक करना चाहते थे। ही वॉज दी मेन
3: बताइए आनंद जी, भावनाओं में बहते बहते आपके बचे कुछ एमएलए एमपी ना बह जाएं बीजेपी की तरफ।
5: प्रकरण पे सिर्फ यही कहना चाहूंगा,
3: बहाव पर थोड़ा रोक लगाइए।
5: जब समय थोड़ा अनुकूल या प्रतिकूल हो जाता है, समय हमारे थोड़ा सा खिलाफ नाराज हो जाता है, तो हमें कोई भी ज्ञान देता और हमें हंस के सुनना पड़ता है। इसके लिए मैं सभी के ज्ञान पाठ सुनूंगा, मैं मौन रहूंगा, मैं आप लोगों की भावनाओं को समझूंगा कि हमसे क्या खता हो गई है कि आपकी बातों पे हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। राजनीति में ताकत चलती है, आज राजनीति में हमारे पास ताकत नहीं है पद्मजा जी।
4: जब ताकत आप लोग क्या कर रहे हो,
5: नहीं है ताकत हमारे पास, छीन लिया है आपकी शक्तियों ने। आपने हमारा धनुष बाण, हमारी गदा, हमारे रथ, सब नाम पहचान सब छीन लिया है। तो आपने हमें इस समय हमने आपने कमजोर और घायल कर दिया है, लेकिन घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ।
4: नहीं नहीं, घातक तो आप लोग हो नहीं, आप लोग राजनीति छोड़ दीजिए। अगर
3: घातक तो ठीक है सर, ये आपका घातक प्रहार आपके अपनी पार्टी पे ना हो जाए, सबसे बड़ा डर यही है। आप घातक किसके लिए है, घातक अपनी पार्टी पे घात मत कर दीजिएगा। एनीवे लेट मी ब्रिंग इन सीमा मलिक। डॉक्टर सीमा मलिक, व्हाट्स गोइंग ऑन? Sanjay Raut is not convinced about your intentions.
6: No, I think we have convinced him. And basically, see, it was just a courtesy meeting. Everybody knows that it was a courtesy meeting. This is a long-standing culture of Maharashtra.
3: But Sanjay Raut is saying that when somebody is a gaddar, you don't extend any courtesy to gaddars.
6: But Sanjay Raut, sir, ma'am, Sanjay Raut is like a big brother to us, and this, Supriya ma'am also said that he is like a big brother to her, and this was, I think this was some overreaction from him, and you know, a misunderstanding only. And I think he will understand. So I will only say that we respect him and for this, and he, I think he will understand with the time, and I think he said understood.
3: But they say Siddharth Yadav, there is no smoke without fire, you know. And Sanjay Raut is a very perceptive man. Unko pehle hi pata chal gaya tha kaun gaddar hai aur kaun asli hai.
6: See, Pawar Sahab is a very senior leader, and everybody respects him. And that also, Mr. Shinde also said that it was a real pleasure that he came to his room or something. So I think
3: it was a pleasure for the two people who met, you know, but it wasn't very pleasurable for the others who were watching.
6: Nothing.
3: Siddharth Yadav, there is no smoke without fire. Why are you constantly creating trouble between the remaining friends? ऐसे ही बहुत कम लोग बचे हैं जो आपस में दोस्त हैं. उनमें भी आप जाकर के यू कीप क्रिएटिंग, यू नो, यू कीप क्रिएटिंग मडिंग द वॉटर्स फॉर देम। व्हाई? सिद्धार्थ यादव,
7: पद्मजा आई डू अग्री देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बट पीपल लाइक संजय राउत आर फायर देमसेल्व्स एंड दे सेट फायर टू देयर ओन हाउस। व्हाट डू यू डू विद दैट? Who is asking Sanjay Raut to come out and give such statements? Who is asking Sanjay Raut to come and bash their own MPs, their own leaders? Who is asking him?
3: You keep posing all these pictures and you post these pictures deliberately. You are trying to provoke Mr. Raut.
7: Padmaja, this is very convenient to say. The reality in parliamentary democracy is that every party has to work really hard. All leaders have to work very hard. You have to be answerable to the people. You have to be answerable to the cadre. You have to work on ground. people like Sanjay Raut, who are just, you know, making the inner circle of the family happy, and pushing people like Aditya Thakre in the forefront, and doing that, you know, the kind of fan following that, you know, he tries to build around him, which is not reciprocated in the people, neither in the cadre. This is the specific reason why leaders are getting angry, not because of BJP. You take TMC, you take Shiv Sena, you take any faction. When you try to push incompetent people to the forefront,

0: leaders who have been with you for decades will lose your hands.
1: So you're saying that people in the NCP are angry? You're saying people in the NCP are angry?
2: What?
0: No, people and everybody.
3: Are you asking?
0: And in every party. Are people not angry in Congress? Are people not angry in TMC? Are people not angry in the Shiv Sena faction? Where are people not angry? In a Congress, you have a Rahul Gandhi. In TMC, you have an Abhishek Banerjee. Here, you have an Aditya Thakre. Then you have a Supriya Sule. Wherever you go, no leader who has been working for decades for any such party can come to the forefront because there's someone, a bhatija, a daughter, a shehzada, someone from the family sitting on the top. What do you do? Is this healthy for the parliamentary democracy? Is what I ask tonight.
1: Dr. Seema,
0: everything aside, this is not for the BJP to blame. I'm sorry.
1: Everybody is angry with dynasty in the party, including yours. And BJP is sitting there for anger management.
3: See, nobody is angry. If you're talking about my party, I can't listen to you, frankly. But if you're talking about my party, I think there is nobody who is angry with us. All our MPs are with us. They come and they regularly meet our big leaders and they plan the strategies and everything. And there's no resentment in our party. I must say this.
1: But Prithviraj Chavan is saying that six MPs are very upset.
3: I just want to put my point.
1: Prithviraj Chavan said that six of your MPs are quite upset, Seema ji.
3: Who?
1: Prithviraj Chavan.
3: They always say like this. Nobody is upset in our party. I'm talking about my party. Nobody's upset or something. All our MPs are with us. You know, and we are not going to join the NDA or something. These rumors are going on since 12 years.
1: But why are your friendly parties then spreading rumors about you, Seema ji? Prithviraj Chavan is on your side. Why is he spreading rumors about unrest in your party?
3: TV channels. There's no truth in this. I can't listen to you.
1: Okay, Anand Dubey, let's try and fix Dr. Seema Malik's line, please. हाँ, बताइए आनंद जी.
4: पृथ्वीराज चव्हाण जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं. उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी कुर्सी से हट जाएंगे, बहुत बड़ा भूकंप आएगा, कोई एप्स्टीन फाइल खुलेगी. तो हम लोग बहुत जागरूकता सावधानी से सब देख रहे थे. ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है. अब वही पृथ्वीराज चौहान जी कह रहे हैं कि कुछ एमपी अस्वस्थ हैं, भाग जाएंगे. फिर हम सावधानी से देख रहे हैं, फिर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. ये राजनीति में बोलना कहना ये सब चलता है. हम लोग राजनीतिक जीव हैं, हम लोग बिना बोले रह नहीं सकते. सिद्धार्थ यादव जी की पार्टी देखो कितने प्यार से हमारे झगड़े को देखती है. शरद पवार जी की पार्टी, शिवसेना आपस में नोकझोंक कर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी सिद्धार्थ यादव जी करेंगे. क्यों? नजर बनाए हुए, आपदा में अवसर. ये मछली पकड़ने वाले हैं, हम मछलियां हैं. इनके कांटे में आ गए तो पकड़ लेंगे, नहीं आए तो मुंह बना के चले जाएंगे. ये सब राजनीति में चलता है और हमें ये स्वाभाविक
1: लगता है. तो आपकी मछलियां इनके डाले हुए दाने की तरफ जाती क्यों हैं भाई? अपनी मछली को आप अपने तालाब में रखिए ना.
4: अब मछलियां हैं वो चली जाती हैं, क्या करूं मैं? मछलियों को इतना समझा पाते तो बीजेपी को नहीं समझा लेते.
1: देखिए आनंद दुबे जी, ही इज बिकम फिलोसॉफिकल सिंस 2024. ही इज बिकम मोर अ फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन. इज लाइक होता है, जो होता है उसको हम रोक नहीं सकते. मछलियां हैं, मछलियों का तो नेचर ही है कि वो दाने की तरफ जाएंगी. और आप वहां बैठे होते हैं सिद्धार्थ यादव, देखिए. और जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, एट द एंड ऑफ द डे सिद्धार्थ यादव डजंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट द एनसीपी और शिवसेना. हिज ओनली क्वेश्चन इज वेयर इज राहुल गांधी, बिकॉज ऑल द प्रॉब्लम्स नीड टू बी सॉल्व बाय राहुल गांधी. सिद्धार्थ यादव.
0: नहीं नहीं पद्मजा, अब आनंद दुबे जी खुद कौन सी वाली मछली है उनको पहले क्लियर करना चाहिए. बट व्हेन यू डोंट हैव एनी सक्सेस इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो फिलोसफी निकल कर आती है, उनकी भी वही निकल के आ रही है. बट आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज ही सेइंग अबाउट पृथ्वीराज चौहान? अब ये अलायंस पार्टनर है उनके, एंड देन पीपल एक्सपेक्ट कि इनको सीरियसली लिया जाए. कौन लेगा इनको सीरियसली? इनके अलायंस को कौन सीरियसली लेगा? वॉट इज लेफ्ट इन देम That actually को जो substance किसी देश के नागरिक को लगेगा, क्या लगेगा इनको देख करके? All of them they say that we are an alliance, we are working together, and you give them a moment and Anand Dubey ji will destroy all of them. अभी आप इनको थोड़ा सा मौका दीजिए, राहुल गांधी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, मेरे को नहीं कहना पड़ेगा
4: रहेगा ना, जहाँ उसको सीरियसनेस रखा जाएगा। इतनी बार इन्होंने हमारा ऑपरेशन किया, किडनी लीवर तक निकाल लिया है पार्टी के। अभी सुन रहे हैं कि ऑपरेशन 3 होने वाला है, ऑपरेशन 4 होने वाला है, ऑपरेशन

0: पांच होने वाला। एक तरफ क्या होता था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति होते थे, वो कहते थे चिमटे से नहीं
1: छोड़ूंगा।
0: आज वाली बीजेपी कहती है चिमटा तो छोड़िए, पूरा कुकर ही ले लूंगा। तो ये बीजेपी बदल गई, जब बीजेपी बदल गई मछली पकड़ने वाले बदल गए, फिर मछलियां भी बदल गई, फिर चारे भी बदल गए। क्या करें, हम लोग बेचारे हो गए। आज लोकतंत्र में जो अच्छा आदमी आनंद दुबे जैसा नहीं जी सकता,
1: अरे आप
0: वो नहीं आगे बढ़ सकता।
1: नहीं मान रहे, मछली नहीं, मारने लग गए,
0: नहीं जा सकते हम आगे,
1: कैसे भला होगा।
0: हमारे पास साधन,
1: आप नेता हैं कि मछली हैं,
0: हमारे पास शक्तियां नहीं है,
1: आप मछली हैं।
0: अरे क्या, मछली तो भगवान के अवतार होते हैं, मत से अवतार
1: छोड़िए, शक्तियों को और संसाधनों को। हमने 50 साल विपक्ष में काम किया है,
0: मत करिए ऐसा। मछली देवता का तो अपमान मत करिए,
1: हम तो नेता ही थे, जनसेवक थे, आप मछली बन गए 10 साल के अंदर ही। क्यों बने,
0: आपने हमें, आपने कांटा डाल डाल के फंसा लिया है, क्यों करते हो। हमें तैरने दो, हम जल में जीना चाहते हैं।
1: कांटा तो मछली
0: जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आग लगाओगे डर जाएगी, आप बाहर निकालोगे मर जाएगी।
1: कोई दाना नहीं चाहिए, कोई कांटा नहीं चाहिए।
0: आप ऑपरेशन बंद कर दो, भारत की राजनीति
2: वाली मछली है। यू नो, ऑन अ सीरियस नोट, टू थिंग्स। वन, देवेंद्र फडणवीस, एंड आई वेरी रेयरली हर्ड हिम बी सो अनइक्विवोकल अबाउट समथिंग, ही सेड नोबडी फ्रॉम एनसीपी शरद पवार इज गोइंग टू बी जॉइनिंग अस, वी हैव नॉट रीच्ड आउट टू एनीवन, वी डोंट वांट एनीवन from NCP Sharad Pawar to join our party. But despite that, and I want you to listen into what Rohit Pawar said. वैसे आप बार बार मछली कह रहे हैं ना, आपके मछली बनते ही बीजेपी कहीं अर्जुन ना बन जाए, कि बिल्कुल मछली की आंख में अपना वो तीर मारने के लिए तैयार हो जाए। But okay, let's listen into what Rohit Pawar said.
3: लेकिन definitely दिल्ली से या महाराष्ट्र से हमारे जो सांसद है, MPs है, उनको कॉन्टैक्ट हो सकता है या हो गया होगा। लेकिन कुछ भी होने के बाद हमारे लोग जब डिलिमिटेशन कायदा का मतदान होगा तब वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और वो डिलिमिटेशन कायदा के खिलाफ वहाँ पे वोटिंग करेंगे। ऐसे कोई भी आपको केस नहीं दिखेगा जहाँ पे वो एब्सेंट है या नेगेटिव वोटिंग, वो डिलिमिटेशन के बारे में, मतलब डिलिमिटेशन के फेवर में कोई वोट करने वाला आपको हमारा MP वहाँ पे नहीं दिखेगा।
2: ओके, सो वरुण सिंह, very clearly at least Rohit Pawar is indicating this is not just a storm in a teacup, people have been contacted.
4: You know, to be very honest, let me tell you, there's a very famous saying in Maharashtra that whatever Sharad Pawar says he doesn't do, and what he does he never says. So whatever it is being said, so for example, if Rohit Pawar says that his MP won't vote, it may change tomorrow, because Sharad Pawar is known for, you know, saying and doing something else. And let me be very clear. No, I'm just like, you know, Anand Dubey has accepted defeat to an extent that he and his party cannot overcome the simple fact that they were the same party. For example, Sachin Iyer. Sachin Iyer was an NCP MLA. He jumped to them. And they, at that time, those people who come into them are honest and they are not called at that. And Mr. Yadav keeps on saying that everyone in other party are unhappy. 8 seconds, yesterday they declared the list, or today they declared the list of 3 MPs from West Bengal. Hmm. All the 3 MPs on BJP ticket are non-BJP leaders who jumped the ship just few days ago. Aren't people in the BJP unhappy with that? So every political party, to be very honest, while they might be taking in leaders from other party and awarding them, that is what the same scenario is happening in across all the political parties. I don't see any political party any different from other political party who are not poaching on to leaders from other political parties.
2: Okay.
4: And what we just saw in Bihar right now, just a moment. We just saw in Bihar, candidate who is given a candidature, he's taking it back based on saying that his family, I'm saying, this also goes on to show that Bankipura, one of the most important seats from when Nitin Naveen was the candidate earlier, was an MLA earlier, when they had to select a candidate, it goes on to show multiple things. You know, I don't know, I'm not a politician to say this, but when I read it as a student of politics, it comes to me as if like the BJP at this moment, at this stage, appears a bit ill-prepared when it comes to smaller elections or elections as such.
2: Okay, and I will give the final word on that to Siddharth Yadav. Siddharth Yadav, it's great to have problem of plenty as long as it doesn't tip over into chaos, which is what Varun Singh is warning you about. It may just end up being chaos. Sabko aap le to lenge, karenge kya unka?
5: But Padmaja, I could not understand the extension of the argument to Bankipur, because the candidate which is fielded in Bankipur is a long time BJP worker who has worked from mandal level, booth level, in Yuva Morcha, long time. We are one party who always respects its own cadre. We are one party who can

0: get a Rashtri Adhyaksh from,
1: who's been a
0: serving MLA.
1: First you gave the ticket to one person and then you changed him within 3 days. Why?
0: And that's a party decision. Padmaja, one has to understand that we are a cadre-based party. We take decisions based on our cadre. The cadre elects who the candidate should be. The cadre elects who the leader should be. Isme, matlab, isme abhi ko bhar wala to nahi aaya.
1: Sir, Abhishek Sinha bhi aapka cadre hi tha na. Abhishek Sinha bhi ABVP se hi uth karke aaye the. Abhishek Sinha kaun sa NCP se aaye the?
0: नहीं तो हमारे कार्डर में से हमको चुनना है ना पद्मजा, तो हम डिसाइड करेंगे कौन होगा कार्डर में. तो बहुत लोग हैं, इतना तो द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज एब्सोल्युटली नॉट कि इतने सारे लोग हैं तो अब सबको चुनाव लड़ाना पड़ेगा, नहीं तो लोग दुखी हो जाएंगे. बिकॉज पीपल हु वर्क इन बीजेपी वर्क विद द इंटेंशन ऑफ सर्विंग द नेशन.
1: आई एम गोइंग टू हैव टू लीव इट एट दैट आई सस्पेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू वी शुड बी डूइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, बिकॉज देयर आर मेनी मेनी लेयर्स टू व्हाट इज हैपनिंग. बट when it comes to the defections we are seeing across states, some possible defections, again tomorrow you have Charanjit Singh Channi in Punjab who has asked for a meeting with the state in charge, Bhupesh Baghel. There is discontent, discord in the opposition, but is the BJP also inviting trouble by effecting so many crossovers? We'll have that discussion at greater length. For the time being, thank you very much, all gentlemen and ma'am, for joining us on Debate One. Moving on now to the storm over the film Satluj, which is only growing bigger with every passing day. The film, which was taken off OTT platforms, is now being screened across villages. In fact, the Akali Dal and other groups are also organizing these screenings inside Gurudwaras. The problem is now, what does one do with this film? Has this ended up exacerbating some of the divisions that existed in the state along sectarian lines for a good two decades? Punjab is back to normal, but is someone now trying to reignite those fires? The entire country is now talking about Satluj, but where does this controversy go from here? Joining us is somebody who's been very vocal and very upfront, somebody who in fact has personally suffered the blowback of what the state of Punjab witnessed in the 80s and the 90s. MOS Railways, रवनीत सिंह बिट्टू इज जॉइनिंग अस. रवनीत जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने बहुत स्ट्रांगली बोला है अगेंस्ट दिलजीत दोसांझ, आप उनसे नाराज क्यों हैं? वो तो कह रहे हैं कि हक है ना हमें पिक्चर बनाने का, आप उनसे इतना गुस्सा क्यों हैं? आप उनको इम्पोस्टर फ्रॉड क्यों बुला रहे हैं?
2: नहीं, पहले तो आपका शुक्रिया आपने, क्योंकि जो जो इससे अफेक्टेड हैं उनका जो व्यू पॉइंट आना जरूरी है, थैंक यू फॉर दैट. मैं दिलजीत से ज्यादा या कम, उनसे कम गुस्सा है, पर ज्यादा जो, क्योंकि जो हनी त्रिहेन है वो भी पंजाब के हैं जिन्होंने बनाई है और अमृतसर से हैं. मैं सबसे पहले, क्योंकि रिकॉर्ड और फैक्ट्स हमेशा, और आपका नेशनल इंटरनेशनल चैनल है उसके ऊपर फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं वो, और इसको मैं चैलेंज करूंगा, और अगर कहीं भी मेरे फैक्ट गलत होंगे तो मैं अपॉलॉजी करूंगा आपके सामने, और मैं माफी मांगूंगा भी मैंने ये फैक्ट्स आपको गलत दिए थे. मैं कहीं भी नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर भी सारा डाटा है जहां से ये पैसा मिलता है, या और अगर कहीं भी 25,000 जो इन्होंने अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की बात की है, अगर वो डाटा सच है तो मैं पहले तो चैलेंज करता हूं भी वो 25,000 जो डाटा फैब्रिकेट किया है उसको, उसकी लिस्ट आपके सामने दिखाएं, देश के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, और जो इनकी बातें कर रहे हैं उनके सामने रखे. 25,000 तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं 5,000 का डाटा ही, उससे नीचे भी मैं बाद में बताऊंगा, 5,000 का भी कोई डाटा इनके पास है तो ये मीडिया में रखें, अपने कमीशन के आगे रखें और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रखें. ये बिल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट में डाटा नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर कमीशन. सेकंड, दिलजीत दोसांझ, और ये जो है इन्होंने गुस्से की बात है, हर पिक्चर बनाता है ठीक है, अरे भाई सेंसर बोर्ड है, आप उसके

0: थ्रू आ रहे हो, आप कोर्ट्स में गए हुए, आप एक ओवर द टॉप जो उसके ऊपर जिसके ऊपर आपने पिक्चर डाली और वहां से बाहर बैठ के विदेश में, यहां कोई नहीं है ना इंडिया से इनको लेना देना है, अब्रॉड बैठ के ये कह रहे हैं भी इसे जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने भी वो सुना है, देखा है, और ये साथ में कहा पद्मदा जी भाई दो दिन के अंदर अंदर ये पिक्चर जो है इसे कोई ना कोई, मतलब सीधा उनका बात था भी इंडियन स्टेट या एजेंसी से इसे उतार देंगी। वो क्यों ये उन्होंने पहले ही बात की, क्योंकि उनके मन में क्या शक था, क्या चोर था। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कहने वालों को भी पता है, सेंसर चैनल्स के ऊपर है, सिनेमा के ऊपर है, लेकिन ओटीटी पे ओवर द टॉप जो कोई भी किसी तरीके का वहां पे गवर्नमेंट का जो बीजेपी को ये कह रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। वहां पे इन्होंने 199 की ये पिक्चर को सेल किया, साथ में जी वालों ने जो Z5 वाले हैं, पता नहीं उसमें क्या वो अपनी बात रखेंगे, पर उन्होंने साथ में ही 495-500 के बीच में ये पैकेज रखा भाई, इसमें आपको वर्ल्ड कप का जो है वो पैकेज भी 300 में बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो क्या ये चीज थी, क्या मजबूरी थी, क्यों उन्होंने डाली, क्यों उन्होंने उतारी, ये बात तो वो बता सकते हैं। लेकिन यहां से एक ऐसी बात उठी भाई ये बीजेपी ने बंद करवा दी, बीजेपी मतलब सरकार ने बंद करा दी, तो एकदम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ढिल्लों पंजाब के, ही हैज रिटन अ लेटर टू अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे आईबी के मिनिस्टर हैं, इंडियन अपने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने उसके बाद इसके ऊपर कमेटी बनाई भी ये पता तो लगे भी कैसे पिक्चर डली, कहां से हट गई, इसके ऊपर उन्होंने उल्टा इंक्वायरी बात की है। पर
1: दिलजीत दोसांझ हैज सेड दैट लुक दे साइलेंस अस इन 1995, दे आर ट्राइंग टू साइलेंस अस इन 2026 एंड द ट्रूथ मस्ट गेट आउट दैट यू हैव मिस्टर खालड़ा हु वाज एन एक्टिविस्ट हु वाज killed in this brutal fashion only because he was highlighting these enforced disappearances, and the government of India is trying to silence us even today like they did in 1995. तो वो हक की आवाज उठा रहे हैं।
0: Agreed. बिल्कुल खालड़ा जी की पिक्चर बनाई दिखाई। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे, हनीत रहन जी से भी, और बड़े बड़े जो डायरेक्टर हैं, कश्मीर फाइल्स बनी, केरला फाइल बनी, और अब इसके ऊपर पंजाब के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। मैं ये नहीं कहता कोई मेरा उनसे मेरा हक है, जैसे उन्होंने ये बनाई एक फिल्म, एज ए इंडियन भारतीय होने के नाते उनकी दूसरी ड्यूटी भी बनती है भी, यहां जो इसके कारण एक बैकलैश, एक यंगस्टर्स में गुस्सा आ गया वन साइडेड दिखा के, एक पिक्चर वैसे होती तो आपने इसको रियलिटी कह के बनाया भी, ये रियलिटी है। अब मैं आपके सामने रखूंगा भी इसके ऊपर भी वो जरूर पिक्चर बनाए, ये कोई वैसे ही मैंने छापे हुए अखबार नहीं है, ये 125 पैसेंजर्स मैसेकर्ड, ये जो लालड़ू के पास पंजाब में हुआ, 125 लोग, इसके ऊपर भी पिक्चर बनाए। उसके बाद आपको मैं एक और आपको हैरान करने वाली बात है, एक यंग आईपीएस ऑफिसर जिनका अविंदर सिंह, ही इज अ गुरसिख गाय, ये एक गुरसिख नए आईपीएस ऑफिसर थे जो पटियाला एनआईएस में, जो अपनी वहां पे मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे थे एनआईएस में, और ये एसएसपी पटियाला थे, इनकी वाइफ आईएएस ऑफिसर थी, इनकी बेटी एक साल की थी, 3 साल का इनका बेटा था। कभी इनकी फैमिली में पूछा जाके इनका क्या हाल, कैसी इन्होंने जिंदगी बतीत की, क्यों, क्योंकि ये देश की बात करते थे, नेशनलिस्ट थे और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, इनके ऊपर कभी आपको रहम तरस नहीं आया। इनकी दाढ़ी भी वैसी है, इनकी भी पगड़ी वैसी है, ये सिर्फ आईपीएस ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा था, इसलिए आपने पिक्चर किन की बनाई, इन लोगों की, ये सच्चाई है, आपने पिक्चर बनाई इन लोगों की। खालड़ा साहब मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे, उन्होंने अच्छा काम किया, पर इनकी आइडेंटिफाई क्यों की बॉडीज के लिए, जो AK-47 डालते थे, ये इनकी इनकी आइडेंटिफिकेशन ही क्यों की, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्यों की, और आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद ये बस मैसेकर टोल 40, ये बटाला में 40 पीपल, उनके परिवार में कभी देखा भी उनकी विधवा का क्या हाल है, उनकी मां का क्या हाल है, उनके बच्चों का क्या हाल है? नहीं। उसके बाद ये एक अमृतसर के गांव में, मैं मतलब कितनी इनकी किसी को याद तरस नहीं आया, इनकी कभी इनको याद नहीं आई भी किस तरीके ये लोग मारे गए, इनके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनेगी। चंडीगढ़ में रामलीला में किस तरीके से आके मार दिया गया, किसी को कोई इनका फिक्र नहीं है। तो ये लोग, और इन्होंने एक और फैक्ट, मैं बाकी बात करूंगा, ये इन्होंने बोला है भी विटनेस इन खालरा मर्डर हु हैड बीन टर्न हॉस्टाइल अलाइव।
1: क्योंकि आपने उस पिक्चर की बात की, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई हमने एक सब्जेक्ट बनाया है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई सोच समझ के कोई वन साइडेड ही दिखाया है, वी शोड एवरीथिंग दैट जसवंत सिंह खालरा वॉज डूइंग, आपको ये सब अगर मैसेकर्स दिखाने हैं आप पिक्चर बना लीजिए, हमारी पिक्चर मत रोकिए।
0: नहीं नहीं, हमने कहां रोकी पिक्चर तो उन्होंने जो आग लगाने की कोशिश उन्होंने की, और बोला क्या
1: आप कह रहे हैं जानबूझकर को रिलीज किया गया आग लगाने के लिए, कौन आग लगाना चाहता?
0: बिल्कुल बिल्कुल वन साइड देखो, फिर दूसरी साइड क्यों नहीं दिखाई? एक एक मैं कह रहा हूं बिल्कुल, जिन पुलिस वालों ने गलत काम किए, आई थिंक मोर देन 127 केसेस हैं जो सीबीआई ने, वो भी तो इंडियन एजेंसीज हैं जिन्होंने टेकअप किया, और आप हद ये है, आप में मेरे ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी उसमें आप दिखा रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर 31 अगस्त को उनका असैसिनेशन हो जाता है, और उस टाइम तक खालरा साहब जसवंत सिंह खालरा जी को कभी पुलिस ने कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कभी उनको उठाया नहीं गया जब पीक ऑफ टेररिज्म था। मेरे ग्रैंडफादर 31 ऑफ अगस्त को वो उनका असैसिनेशन हो जाता है, 6 ऑफ सितंबर को जो कोड किया है उनको पुलिस ने उठाया, और अक्टूबर में जाके वो उसमें पिक्चर में बताया गया है भी उनको मार दिया गया। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के कौन से मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, ये देखना किसका काम है? आप बात एकदम हर चीज उसमें फैक्ट के बाहर, और जो दिलावर सिंह दिखाया ह्यूमन बम, उसकी बात की जोड़ी गई है, क्यों ये फैक्ट इतने बड़े गलत दिखाए, वो तो मेरे ग्रैंडफादर से संबंधित है। जो दिलावर सिंह था वो एक अलग एसपीओ था, उसका कोई भाई नहीं मारा गया था, कोई उसका गांव ने जसवंत सिंह खालरा से नहीं जुड़ा हुआ था, वो तो अलग एक चीज थी, उसको उससे जोड़ दिया गया भी उसने वहां पे ये किलिंग देखी और आके वो ह्यूमन बम बन गया। और जो उन्होंने कहा है इसका, ये जिंदा आदमी है, इसका नाम उन्होंने अलग पिक्चर में कुछ रखा है, जो उनको खाना खिलाया था जिसने भी, उसको भी मार दिया गया, पिक्चर में दिखाया गया है केएल सिंह।
1: क्योंकि आपने अपने दादाजी की बात की है, ऑन अ पर्सनल नोट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत से लोगों ने इस पर एतराज भी किया है दैट देर इज ऑलमोस्ट ग्लोरिफाइंग म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड व्हेन द असैसिनेशन ऑफ सरदार बेअंत सिंह जी इज शोन देयर। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट ऑन अ पर्सनल नोट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज यू नो समबडी हु इज इन द बीजेपी अ मिनिस्टर, बट एज अ ग्रैंडसन, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सीन?
0: देखो बदना जी, कई बार बहुत बहुत अफसोस होता है, दुख होता है, हम लोगों ने तो सब कुछ इस देश के लिए खोया, और एक ही चीफ मिनिस्टर है जिसने जम्मू कश्मीर में बहुत हालात ऐसे रहे, गवर्नरी रूल रहा, वहां पे फौज लगी, यहां पे सरदार बेअंत सिंह जी लोगों के इलेक्टेड होके लोगों ने चुना, उन्होंने जो यहां पे किसी की बरात नहीं चढ़ती थी पंजाब में, अगर कोई बरात लेके जाता था घोड़े पे, उसे उसके साथ उसी गांव के जो पौंड छप्पड़ बोलते हैं उसे उसमें वहां पे उसका मुंह काला किया जाता था। और कोई मेरी बहन, आप इस पे प्रोग्राम जरूर करना, उस टाइम के पुराने रिपोर्टर्स आपके सामने होंगे, जो मेरी बहन मेरी बेटी अगर वो अपनी मर्जी से सूट डाल लेती थी, जींस डाल लेती

0: थी, अगर वो दो गुत्ते पीछे नहीं करती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, स्कर्ट या ये तो बहुत ही दूर, सिर्फ एक ड्रेस थी हर स्कूल में पंजाब और चंडीगढ़ में, वाइट कुर्ता और साथ में ब्लैक कलर की सलवार और केसरी चुन्नी। तालिबान का राज था यहां पे। आज वो चीजें बदल गई। मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आ गई 95 को, और आप आज अंदाजा लगा लीजिए 36 और प्लस 31, उसके बाद जो जनरेशन पैदा हुई है उसके मन में क्या आएगा। इन्होंने इस आग को जन्म दिया है। और यहां पे कोई ये पिक्चरों की बात करता है, मैं दिलजीत दोसांझ से पूछना चाहता हूं और हनी त्रेन से ही पूछना चाहता हूं भी, कोई उस टाइम पंजाब में थिएटर में कोई पिक्चर लगती थी, कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट क्या पंजाब में खुला अखाड़ा, मतलब जैसे गुरदास मान गाते हैं जा कॉन्सर्ट, मैं शर्तीय कहता हूं भी, अगर कोई 80 से 92 पहली बार कोई फिल्म इंडस्ट्री, मेरे ग्रैंडफादर ने धर्मिंदर, अमरीश पुरी जितने लोग से, तमस्सम, ये लोग जो पंजाब से जुड़े हुए थे, कोई पंजाब में पिक्चर नहीं, जो सबसे बड़ा हमारा धर्मेंद्र के कजन थे वरिंदर, उनको शूट किया गया। और जिन्होंने प्रणीति, प्रणीति जो एक हमारी एक्ट्रेस है, जिन्होंने एक चमकीला नाम की पिक्चर बनी जिसमें इन्होंने ही काम किया है, दिलजीत दोसांझ ने चमकीला, वो सबसे जिसने गंदे गाने गाए हैं, मैं कह नहीं सकता लेडीज के, हमारी बहनों के लिए, उसको भी उस टाइम उसने गाने गाए, वो माना नहीं क्योंकि बाकी सब रोके हुए थे, चमकीला ने और अमरजीत कौर ने एक दो कैसे निकाली, उनको दिन में दोनों को मारा गया, टेररिस्टों ने मारा, और उनकी बॉडी लेने भी कोई फैमिली वाला नहीं आया, वो भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी सी थी। तो उसके ऊपर दलजीत ने पिक्चर बनाई, पर उसमें दलजीत ने ये नहीं दिखाया, चमकीला और प्रणीति ने ये नहीं दिखाया भी दोनों को किसने मारा। उसके ऊपर भी सच्चाई दिखाते ना भी, चमकीला की मैंने उसमें पैसे बना लिए क्योंकि उसमें 84 में पैसे बना लिए और बातें थी, इनके लिए सिर्फ इनकम है। और यहां मैं कह रहा हूं भी, मैं इसमें चैलेंज करता हूं जो आपके चैनल पे सुनेगा, अगर पंजाब में, और हमारे पे गुस्सा क्यों भाई, गुस्सा करना है तो लोगों कांग्रेस पे करो, जिस कांग्रेस ने, जिस इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने गोल्डन टेंपल पे अटैक किया, हमारे गुरुद्वारे ढाए 84 में, जो हर जगह सिखों को मारा गया, हर देश के कोने कोने में मारा गया, उस चीज को आग लगी हुई थी, जो मेरे ग्रैंडफादर ने तो वो आग आके ठीक करी, उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने आके उसे ठीक किया और अपनी शहादत दे दी। उसके बाद पंजाब आज खुशहाल है, पंजाब आज तरक्की कर रहा है, पर आज फिर मैं इसलिए तड़फ रहा हूं भी, आज फिर 22 पुलिस स्टेशनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए गए हैं, 22 पुलिस स्टेशनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए गए हैं, ये और ड्रग्स की में।
1: तो आप कह रहे हैं कि ये दोबारा इसको एक तरीके से, फाइनली द वे पीस हैज रिटर्न टू पंजाब, उसको दोबारा एक तरीके से, देयर इज एन एफर्ट टू ट्राई एंड पुल इट बैक इनटू द पास्ट, बट हाउ डू यू स्टॉप इट, रवनीत सिंह बिट्टू, हाउ डू यू स्टॉप इट, बिकॉज इवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस फिल्म हैज बीन पुल्ड आउट, इट्स बीइंग स्क्रीन्ड इन गुरुद्वारास, द एसजीपीसी टुक आउट अ मार्च टुडे, दे आर होल्डिंग स्क्रीनिंग्स इन विलेजेस, इन गुरुद्वारास, देर आर एलईडी ट्रक्स विच आर यू नो ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस द विलेजेस ऑफ द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान, अब तो ये रुक नहीं सकती ना, कहीं इस बैन लगा के गलती तो नहीं कर दी, अब आप एसजीपीसी
0: को कैसे रोकेंगे? मैं यही कह रहा हूं भी, बैन लगा ही नहीं, ये प्रोपेगंडा है, ओटीटी के ऊपर उन्होंने पिक्चर डाली, खुद डाल के खुद उतार ली, इसमें गवर्नमेंट का, बीजेपी का, मैं एक मिनिस्टर होने के नाते कह सकता हूं बिल्कुल कोई रोल नहीं है,
1: ये तो आईटी मिनिस्टर के कहने पे हटाया गया है, आईटी मिनिस्टर हैज आस्क्ड फॉर इट टू बी पुल्ड आउट,
0: इसके ऊपर इंक्वायरी है जो वो मिनिस्ट्री ने करी है, बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं, बीजेपी तो यहां पंजाब में ना, यहां गवर्नमेंट में थी ऊपर, ना सेंटर में गवर्नमेंट थी, वो तो कांग्रेस है, उसे जवाब देना चाहिए भाई, ये हालात क्यों बनाए उस टाइम, क्यों सिखों के साथ ये हुआ। और अकाली दल जो कर रहा है, अकाली दल के लिए जो मेरे रिस्पेक्टेड मिसेज वाइफ ऑफ खालड़ा जी, उन्होंने आके सीधा आप उसको भी दिखा सकते हैं बहुत चैनलों

पे चला है। उन्होंने सीधा कहा भाई 97 में हमें लगा था भी प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि वो अकाली दल के एक्टिविस्ट थे, अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी थे खालड़ा साहब,

0: मत कीजिए। ये उनकी वाइफ ने, और मैं एक और बात कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं उनके वाइफ रिस्पेक्टेड खालरा साहब के पे, मैं उनको जरूर मिलूं, उनके पास बैठूं, भाई जाने किसकी गई है, परिवार आपका मेरा और बाकी जो सारे हिंदू ऑफिसर पुलिस वाले और पंजाब भी सिख, और आज उसके ऊपर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? जब वो जिंदा थे उनको आज तक जो कौमी शहीद जो एसजीपीसी फोटोज लगाती हैं दरबार साहब के साथ म्यूजियम में, कौमी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। चार बार उन्हें इलेक्शन लड़ाई गई, मिसेस खालरा को चार बार पार्लियामेंट और विधानसभा किसी ने मदन दी की, उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो हम कोशिश करेंगे
1: उनका इस तरीके से पॉलिटिकल उनको वेपनाइज किया जा रहा है,
0: वेपनाइज किया, और मैं कोशिश करूंगा जब वो बाहर से आए हम दोनों इकट्ठे बैठेंगे, जिन्होंने दुख जे झेला है उस पंजाब की लड़ाई में, हम इकट्ठे बैठ के ये जो पॉलिटिक्स करते हैं उनका मुंह बंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी।
1: पर ये बताइए कि जब आपकी आपका एक स्टेटमेंट है उसको बहुत एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, जब आपने कहा था कि भाई अगर आपको जसवंत खालरा जी पे बनानी है पिक्चर बनानी है, अगर आपको ये पिक्चर बनानी है कि कैसे जो इनोसेंट सिख थे उनके ऊपर अत्याचार किया पुलिस ने, तो आप दिलवान बस मैसेकर पे भी बनाइए, आप लालुड़ू बस मैसेकर पे भी बनाइए, आप फतेहाबाद बस किलिंग पे भी बनाइए। तो ये एक तरीके से माहौल खराब कर रहा है, क्योंकि फिर से उस वक्त जो एक खाई थी या जो एक दरार पैदा करने की कोशिश की गई थी सिखों और हिंदुओं के बीच में, उसको एक बार दोबारा, दोज क्रैक्स आर गोइंग टू बी रिवाइव्ड एंड दैट्स वेरी डेंजरस, इट्स प्लेइंग विद फायर।
0: नहीं पदमिंदा जी, बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुओं की बात अकेले नहीं कर रहा, हिंदू तो बेचारे मैं हम बैठे हैं हमारे जैसे लोग हिंदुओं को बिल्कुल उनकी रक्षा करने के लिए, मेरे दादाजी, हिंदुओं की बात नहीं है अकेली। जो ये मैंने आपको दिखाया, ये कौन, ये एसपी साथ में केपीएस गिल की किलिंग हुई, और ये कौन कह सकता है भी ये अकेले, 22 डीएसपी मरे, और मैं अगले दिनों में आपके चैनल पे भी भेजूंगा, और मैं हर सिख के घर ही जाऊंगा जो किलिंग हुई है, हिंदू के घर नहीं जाऊंगा, ये चीज नहीं करेंगे। लेकिन जो हर सिख मरा है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा था पिछले लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ही 136 जो टेररिस्ट ने किलिंग की है अकेले लुधियाना में, वो सिख फैमिलीज हैं, हिंदू और यहां ये लड़ाई नहीं थी, ये तो दिखाई जाती है। ये बस में उतार के जो मारे वो अकेले हिंदू थोड़ी थे, वो सिख हैं, उसमें भी पंजाबी हैं, एससी हैं। ये कोई अगर गलत बात करे, ये जलंधर स्टेशन पे ब्लास्ट हो गया, इसमें किसको पता था कौन सिख है? ब्लास्ट में कोई आइडेंटिफाई कर सकता है भी सिख है या स्टेशन पे? अभी जहां प्रधानमंत्री जी आएंगे
1: जी।
0: हम उसे जलंधर स्टेशन में उसे बना रहे हैं, स्टेशन पे रेलवे ब्लास्ट हो, इसमें कौन पता, कोई बिहारी था, कोई यूपी वाला था, कोई पंजाब वाला था, किसको पता है?
1: मेरे को ये बताइए कि दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड मेनी पीपल वर्क टू फाइनली गेट पंजाब टू वेयर इट इज टुडे, योर दादाजी वाज वन ऑफ देम, केपीएस गिल वाज सिख,
0: वो कोई हिंदू थे, वो तो सिख थे,
1: केपीएस
0: गिल कोई हिंदू था?
1: करेक्ट, केपीएस गिल के ऊपर भी अब बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, हाउ डू यू एनालाइज हिज लेगेसी, फॉर यू इज केपीएस गिल a butcher in khaki or a hero who got rid of militancy in Punjab? How do you evaluate his
0: legacy? Padmala ji, main is baat ka aaj KPS Gill jo the, wo Assam cadre ke officer the, Assam se yahan aaye gaye, laaye gaye kyunki Punjab mein DGP Revero rahe, unhone bahut kaam kiya, par KPS Gill chale gaye, पहले कामयाब नहीं हुए, फिर दूसरी बार फिर आए, सेकंड टर्म उनको दी गई, बिल्कुल केपीएस गिल, जहां ये वो पहले भी थे रिवेरो साहब उससे भी मजबूत थे, ये मारने से काम नहीं होता, अकेला भी गोलियां मार दी काम हो गया, नहीं, गवर्नरी रूल था, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने गवर्नरी रूल लगा के, मिलिट्री लगा के, कांग्रेस ने फौज लगा के देख लिया था, मार मार के, मारने से नहीं होता। जब सरदार बेअंत सिंह आए उन्होंने पंचायत इलेक्शन करवाई, उन्होंने काउंसलर की इलेक्शन करवाई, उन्होंने नौजवानों को सिनेमा दिया, गाने वाले दिए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाए, नौकरियां दी, इंडस्ट्री लेके आए, इंडस्ट्री वालों को प्लॉट दिए भी और इंडस्ट्री लगाओ, तो ये सारी चीजें हुई, ये पुड्डा जैसे नई नई मिनिस्ट्रीज बनी, ये अकेला मारने से नहीं हुआ, आप सोचो भी मारने से खत्म हो गए, नहीं, आप

0: that they wanted to investigate whether there was a bigger conspiracy behind this matter to be conducted, and simultaneously that there needs to be other identifications to be done as far as the entire KDMC hospital doctor assault incident is concerned. However, keeping Matre's medical condition in check, the court has stated that after every 6 hours, Ramesh Matre will be taken for his checkup, and in these 6 hours in between, if his health deteriorates, there would be a medical practitioner that will be brought in for his checkup. And henceforth, the court here has clearly ensured that be it a public representative or any other ordinary person, responsibility, especially social responsibility, is important, and if that is not followed, then action would be taken accordingly, irregards of be it the VIP treatment or the privilege that these elected representatives they get. However, the court is clear of the view that such conditions and the accused in these scenarios will not be spared at all.
1: And the other news that we're tracking in from the state of Maharashtra is the big buzz over Sharad Pawar and Ekna Shinde's meeting. It was not about a bouquet of 15-minute chat and a room that had changed hands has sent Maharashtra politics in buzzing over Sharad Pawar's leaning. It all started on Wednesday when the NCP SP chief walked into the assembly for a meeting on the Maharashtra-Karnataka border issue. Shinde reportedly cut short a cabinet meeting and welcomed a veteran with a bouquet, spent 15 minutes with him in his office, and then here's where it gets curious. Pawar stayed back and held a meeting of his own party legislators. The timing of the meeting drew sharp reactions from ally Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut, who asked, why did Pawar pick a traitor's chamber? Here are some reactions that are coming in on the top political developments that are creating buzz in the state of Maharashtra.
2: Pawar sahab hamare supreme leader hai, Mahavikas Agadi ke. हमारे नेता है. कल हमारी भावना थी, हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है. नहीं देखिए, एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये हम मानते हैं. जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी. ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में. तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे. मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता.
3: नहीं, मेरी संजय राउत साहब से कल बात हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको कोई गलत खबर किसने दी थी, कुछ नहीं.
4: अच्छा, जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता है?
3: कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है. एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम हैं, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे.
5: भाई शरद पवार जी विधानसभा भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे, क्या हुआ था वो इस वक्त में?
3: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कम्युनिकेशन है, स्टॉर्म इन अ टी कप.
4: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने.
3: किसने बोला आपको? एक मिनट भी नहीं मिला. वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले. छोटी सी, पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है.
6: राजनीति में और विशेषतः संसद और विधिमंडल में, विधानसभा में, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते. हमारे विचार अलग होते हैं, हम कड़ा प्रहार करते हैं, हाउस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं, जो आज नहीं है. लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस समय एक अलग वातावरण था. एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी. हाँ, एक बात जरूर है, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, वो किसे मिले, क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी, या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था उसे आप सम्मान दोगे, उसे जाके मिलोगे, तो उनको ठेस तो लगेगी. तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ.
1: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: महा विकास आघाड़ी के हमारे नेता है, कल हमारी भावना थी, हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है। नहीं देखिए, एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये हम मानते हैं। जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी। ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में। तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे। मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता।
1: नहीं, मेरी संजय राउत साहब से कल बात हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको कोई गलत खबर किसने दी थी, कुछ नहीं।
2: अच्छा, जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता है?
1: कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है। एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम है, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे।
3: भाई शरद पवार जी विधान भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे, क्या हुआ था वो इस वक्त में?
1: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कमी है, स्टॉम इन अ टी कप।
2: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने?
1: किसने बोला आपको? 1 मिनट भी नहीं मिला। वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले। छोटी सी पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है
4: राजनीति में, और विशेषतः संसद और विधिमंडल में, विधानसभा में। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, हमारे विचार अलग होते हैं, हम कड़ा प्रहार करते हैं हाउस में, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं, जो आज नहीं है। लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम, केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस समय एक अलग वातावरण था, एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर है, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, वो किसे मिले, क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी, या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था उसे आप सम्मान दोगे, उसे जाके मिलोगे, तो उनको ठेस तो लगेगी। तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ।
5: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.
6: They say morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the right insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12, your edge for every move.
7: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
8: This location from Tel Aviv
7: brought clarity right now, right to complex right issues of national security and international affairs.
9: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
10: The Ayatollah Khamenei is gone.
11: There has been a missile attack right behind you,
12: and we need to rush into a shelter.
13: Heading there.
14: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
7: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
15: Buy now.
16: Sell immediately.
15: Hold it, boss.
16: Buy now.
15: Sell.
16: Hold.
15: Buy. Sell immediately.
7: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet. Monday to Friday, 10:30 a.m. Only on NDTV Profit.
17: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Raut, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7 with me, Tanisha Awasthi. Over the next half an hour, we're going to take you through the stories that have set the agenda today. But first, as always, the headlines. See Joseph Vijay visits Karur a year after the deadly stampede. This time he is back as the chief minister. In his address, Vijay says that he came for the people but was blamed for the stampede deaths. After a 7-month delay, Talapathy Vijay's Jananayagan has finally received a certification from the CBFC. The board cleared the film after directing 12 cuts, including edits to political references and sensitive scenes ahead of his July 24 release. A fresh CCTV footage has reopened questions about the death of a 9-year-old Amira, a class 4 student at Nija, at a private school in Jaipur, who fell from the 4th floor of the building last November. The family has alleged negligence by school. Law catches up with the thug Shiv Sena corporator Ramesh Mathre. He has been remanded to police custody till July 13 in Dombivali doctor assault case. Sharad Pawar's meet with Eknath Shinde creates buzz, triggers Team Uddhav. Eknath Shinde meanwhile says that we are political opponents and not enemies. And Prime Minister Modi arrives in New Zealand on final leg of the Three Nation Tour. This is the first visit to New Zealand by an Indian Prime Minister in 40 years. And we're starting this edition with the top political story that came in this afternoon from Tamil Nadu, where the Chief Minister, C. Joseph Vijay, has given an emotional speech in Karur. He called the stampede most emotional time of his life and blamed the former Chief Minister, M. K. Stalin, and Tamil Nadu police for the stampede. He even called out the DMK and stated that they mocked him shamelessly during the stampede. He also announced that a memorial would be set up for the stampede victims in Karur by TVK. Take a look at this report on all that happened today on C. Joseph's visit to Karur.
18: Nine months later, Vijay back in Karur. Tamil Nadu Chief Minister returning to the site of the darkest tragedy of his political journey. The memories remain raw. So do the emotions.
19: Oru manushan லைஃப்பில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு உயரத்துக்கு போனாலும் மனசளவில் சில வலிகள் காயங்கள் அதை மறக்க முடியாது இல்லையா. எல்லார் லைஃப்லேயும் அப்படி தான், நமக்கும் அப்படி தான், நிறையா வலிகள் காயங்கள் எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் வந்திருக்கிறோம். ஆனால் எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப ஜாஸ்தியான அந்த வலியும் அந்த காயமும் எனக்கு வந்து அந்த கரூர் சம்பவம் தான்.
18: For families who lost loved ones in the stampede, the Chief Minister announced compassionate government appointments for 31 next of kin. But grief quickly gave way to politics. Vijay used the occasion to answer the allegations that have followed him ever since the stampede.
19: அதே மாதிரி நாமக்கல் அந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு கரூர் வரும்போது அந்த கரூர் போலீஸ் எங்களை அலர்ட் பண்ணியிருக்கலாம்ல.
18: The Chief Minister questioned security arrangements and insisted the responsibility could not be placed solely on him. His remarks immediately triggered a political counter-attack. Senior DMK leader V. Senthil Balaji accused Vijay of rewriting history, claiming it was the then Chief Minister M.K. Stalin and Deputy Chief Minister Udayanidhi Stalin who rushed to help victims and ensured treatment. The compassion drops to victims of the tragedy has become a flashpoint too.
20: எல்லாருமே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு, அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் அதை பற்றி அதிகமாக சொல்ல விரும்பல, ஏன்னா விசாரணையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதை பற்றி நான் அட்லீஸ்ட் நானாவது ரெஸ்பான்சிபிளாக அதை பற்றி பேசாமல் இருக்கிறது சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அந்த நேரத்தில் கூட மக்களோடு நின்றவர்கள் யார், மக்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள் யார், மக்களை தவிக்க விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து ஓடி போனவர்கள் யாருன்னு மக்களுக்கு நல்லா தெரியும்.
18: Ally Congress came out in defense, urging political parties not to exploit the tragedy. saying the decision to provide jobs had been taken earlier and that

0: to be conducted, and simultaneously that there needs to be other identifications to be done as far as the entire KDMC hospital doctor assault incident is concerned. However, keeping Matre's medical condition in check, the court has stated that after every 6 hours, Ramesh Matre will be taken for his checkup, and in these 6 hours in between, if his health deteriorates, there would be a medical practitioner that will be brought in for his checkup. And henceforth, the court here has clearly ensured that be it a public representative or any other ordinary person, responsibility, especially social responsibility, is important, and if that is not followed, then action would be taken accordingly, irregards of be it the VIP treatment or the privilege that these elected representatives they get. However, the court is clear of the view that such conditions and the accused in these scenarios will not be spared at all.
1: And the other news that we're tracking in from the state of Maharashtra is the big buzz over Sharad Pawar and Eknath Shinde's meeting. It was not about a bouquet of 15-minute chat and a room that had changed hands has sent Maharashtra politics in buzzing over Sharad Pawar's leaning. It all started on Wednesday when the NCP SP chief walked into the assembly for a meeting on the Maharashtra-Karnataka border issue. Shinde reportedly cut short a cabinet meeting and welcomed a veteran with a bouquet, spent 15 minutes with him in his office, and then here's where it gets curious. Pawar stayed back and held a meeting of his own party legislators. The timing of the meeting drew sharp reactions from ally Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut, who asked, why did Pawar pick a traitor's chamber? Here are some reactions that are coming in on the top political developments that creating buzz in the state of Maharashtra.
2: Pawar sahab hamare supreme leader hai Mahavikas Agadi ke. हमारे नेता है. कल हमारी भावना थी, हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है. नहीं देखिए, एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, यह हम मानते हैं. जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी. ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में. तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे? मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता.
3: नहीं, मेरी संजय राउत साहब से कल बात हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको कोई गलत खबर किसने दी थी, कुछ नहीं.
4: अच्छा, जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता है?
3: कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है. एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम हैं, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे.
5: भाई शरद पवार जी विधान भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे, क्या हुआ था वो इस वक्त में?
3: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कम्युनिकेशन, स्टॉर्म इन अ टी कप.
4: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने.
3: किसने बोला आपको? एक मिनट भी नहीं मिला. वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले. छोटी सी पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है.
6: राजनीति में और विशेषतः संसद और विधिमंडल में, विधानसभा में, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते. हमारे विचार अलग होते हैं, हम कड़ा प्रहार करते हैं, हाउस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं, जो आज नहीं है. लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस समय एक अलग वातावरण था. एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी. हाँ, एक बात जरूर है, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, वो किसे मिले, क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी है, या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था उसे आप सम्मान दोगे, उसे जाके मिलोगे, तो उनको ठेस तो लगेगी. तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ.
1: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: the privilege that these elected representatives they get. However, the court is clear of the view that such conditions and the accused in these scenarios will not be spared at all.
1: And the other news that we're tracking in from the state of Maharashtra is the big buzz over Sharad Pawar and Ekna Shinde's meeting. It was not about a bouquet of 15-minute chat and a room that had changed hands has sent Maharashtra politics in buzzing over Sharad Pawar's leaning. It all started on Wednesday when the NCP SP chief walked into the assembly for a meeting on the Maharashtra-Karnataka border issue. Shinde reportedly cut short a cabinet meeting and welcomed a veteran with a bouquet, spent 15 minutes with him in his office, and then here's where it gets curious. Pawar stayed back and held a meeting of his own party legislators. The timing of the meeting drew sharp reactions from ally Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut, who asked, why did Pawar pick a traitor's chamber? Here are some reactions that are coming in on the top political developments that creating buzz in the state of Maharashtra.
2: Pawar sir, hamare supreme leader hai Mahavikas Agadi ke. हमारे नेता है. कल हमारी भावना थी, हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है. नहीं देखिए, एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये हम मानते हैं. जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी. ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में. तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे. मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता.
3: नहीं, मेरी संजय राउत साहब से कल बात हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको कोई गलत खबर किसने दी थी, कुछ नहीं.
4: अच्छा, जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता है?
3: कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है. एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम हैं, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे.
5: भाई शरद पवार जी विधान भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे, क्या हुआ था वो इस वक्त में?
3: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कम्युनिकेशन, स्टॉर्म इन अ टी कप.
4: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने.
3: किसने बोला आपको? एक मिनट भी नहीं मिला. वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले. छोटी सी पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है.
6: राजनीति में और विशेषतः संसद और विधिमंडल में, विधानसभा में, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते. हमारे विचार अलग होते हैं, हम कड़ा प्रहार करते हैं हाउस में, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं, जो आज नहीं है. लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस समय एक अलग वातावरण था. एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी. हाँ, एक बात जरूर है, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, वो किसे मिले, क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी है, या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था उसे आप सम्मान दोगे, उसे जाके मिलोगे, तो उनको ठेस तो लगेगी. तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ.
1: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.
7: Launch control, 0 to 100.
8: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
9: This car makes no sense, yet it makes every sense.
10: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
8: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
11: Your first move sets the day, and in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
12: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
13: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
11: I decode the global pulse, shaping the market mood.
12: I bring insights that help you make decisions that matter.
13: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's

0: Wednesday when the NCP SP chief walked into the assembly for a meeting on the Maharashtra-Karnataka border issue. Shinde reportedly cut short a cabinet meeting and welcomed a veteran with a bouquet. Spent 15 minutes with him in his office, and then here's where it gets curious. Pawar stayed back and held a meeting of his own party legislators. The timing of the meeting drew sharp reactions from ally Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut, who asked, why did Pawar pick a traitor's chamber? Here are some reactions that are coming in on the top political developments that are creating buzz in the state of Maharashtra.
1: नाराज कल से आज नहीं, पवार साहब हमारे सुप्रीम लीडर है महाविकास आघाड़ी के, हमारे नेता है। कल हमारी भावना थी, हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है। नहीं देखिए, एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये हम मानते हैं। जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी। ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में। तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे? मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता।
2: नहीं, मेरी संजय राउत साहब से कल बात हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको कोई गलत खबर किसने दी थी, कुछ नहीं।
3: अच्छा, जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता है?
2: कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है। एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम है, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे।
4: भाई शरद पवार जी विधान भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे, क्या हुआ था वो उस वक्त में?
2: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कमी है, स्टॉम इन अ टी कप।
3: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने।
2: किसने बोला आपको? एक मिनट भी नहीं मिला। वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले। छोटी सी पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है।
5: राजनीति में और विशेषतः संसद और विधिमंडल में, विधानसभा में, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। हमारे विचार अलग होते हैं, हम कड़ा प्रहार करते हैं, हाउस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं, जो आज नहीं है। लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस समय एक अलग वातावरण था, एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर है, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, वो किसे मिले, क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी, या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था उसे आप सम्मान दोगे, उसे जाके मिलोगे तो उनको ठेस तो लगेगी। तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ।
0: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.